सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 47 सेकेंड हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च

0: नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार,
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते
7: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
8: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
7: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच।
8: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
9: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
10: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
10: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
9: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
10: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
9: For details, log on to www.ddindia.com।
7: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे देवों के देव प्रथम पूजनीय श्री गणेश, आप करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका स्वरूप ज्ञानमय है, आप अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। आप भक्तों के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम।

प्रभु श्री राम का जीवन समूची भारतीय संस्कृति का समन्वय है। राम ने जम्बूद्वीप भारतवर्ष की समूची धरती से अपने कदमों से पैदल नाप डाला। राम का त्याग औरों का दुख अपना दुख मानकर दूर करना ही राम का रामत्व है, और यही रामत्व उन्हें ईश्वरत्व प्रदान करता है।

जीवन की बेल पर सभी फल मीठे नहीं होते, कुछ खट्टे तो कुछ मीठे होते हैं। गुलाब के पौधे के साथ कांटे भी मिलते हैं। इसी तरह दुख और सुख जीवन के अविभाज्य अंग हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा। दुख भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि दुख की अनुभूति के कारण ही सुख का मोल पता चलता है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, चिंतन बिंदु।
1: यश के सौरभ से बड़ी और कौन सी सौरभ सुगंध है? यश की सुगंध ऐसे अनेक फूलों को जन्म देती है जो सौरभमय होते हैं। ऐसे सौरभमय फूलों का सौरभ हमेशा फैलता रहता है और नए फूलों को जन्म देता जाता है। इस प्रकार यश का ये सौरभ अनश्वर रहता है। मातृभूमि की रक्षा में लड़ते लड़ते वीरों ने अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। रणक्षेत्र में चारों ओर उनके शव पड़े थे। धरती माँ के अन्न जल का ऋण ब्याज समेत उन्होंने चुका दिया था। जीवन के अंतिम क्षण और प्राणों की अंतिम धड़कन तक वे शत्रु से जूझते रहे। धरती माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। धरती को अश्रुपात करते देखकर सूर्यदेव ने अपना रथ रोककर विनयपूर्वक कहा, धरती माँ, तुम्हारे इन पराक्रमी पुत्रों को मैं अपना प्रकाश अर्पित करने की अभिलाषा रखता हूँ।

0: तेजस्वियों का श्रृंगार तेज से ही होना चाहिए। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो वीरगति प्राप्त इन मानव श्रेष्ठों को प्रकाश अर्पण कर मैं भी कुछ पुण्य लाभ कर लूं। धरती बोली, सूर्यदेव, आपका तेज और आपका प्रकाश संध्या के साथ ही समाप्त हो जाएगा। वो तो क्षणिक है, लेकिन मेरे पुत्रों की शौर्य और यश का प्रकाश तो अमर है। उस प्रकाश के सम्मुख भला आपके प्रकाश की क्या बराबरी हो सकती है? आपका प्रकाश और तेज तो काल से ग्रसित है, लेकिन मेरे इन पुत्रों ने तो काल को ही ग्रस लिया है। धरती माँ का उत्तर सुनकर सूर्यदेव ने उन्हें नमस्कार कर प्रस्थान किया। इसके बाद वायु ने अनुरोध किया, माँ, नंदन वन का सौरभ लाया हूँ, इस दिव्य सौरभ से अपने इन पुत्रों का अभिषेक मुझे करने दो। धरती ने कहा, वायुदेव, यश के सौरभ से बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है? विश्व का कोई भी तेज और कोई भी सौरभ वीर के तेज और यश सौरभ के सम्मुख कभी नहीं टिक सकता। मेरे वीर पुत्रों को यश का दिव्य तेज और अनश्वर सौरभ प्राप्त हुआ है, मैं संतुष्ट हूँ और अब मुझे इन पुत्रों के लिए और कोई भी आकांक्षा नहीं है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज के तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। इसी सभा में 7:30, 8:45 और 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

1:50 पर आप सुनेंगे सतीश कुमार सिंह से बातचीत। विषय होगा कैल्शियम एवं फास्फोरस का पशु उत्पादन पर प्रभाव।

रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ई कचरा विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं विनय कुमार गुप्ता। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत के एक प्रोग्राम में आज आप सुनेंगे अबिदा परवीन और गुलाम अली चंदन दास को। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र मानस कान।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस गान।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम।

0: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने वाले हैं। अब सुनिए दिल्ली

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news.

ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे आप फिल्म जिस देश में गंगा बहती है मुकेश की आवाज़ में। संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल थे शैलेंद्र के।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते गुनगुनाते
3: सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700014242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
7: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
8: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
9: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
8: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
9: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
8: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
9: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
8: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य।
7: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार। सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
1: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
2: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो। ये पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की GI टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्म

0: भूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: जब तक अपनी तय की हुई

0: जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पूर्वा सुहानी।

इस गीत को लिया है हमने फिल्म सफ़र से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और बोल है इंदिवर के।

पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।

इस गीत को संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने और बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के, आवाज है किशोर कुमार की। पुरवा सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

कार्यक्रम का अगला गीत लिया है हमने फिल्म जहरीला इंसान से। आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, जिसे संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने, और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म हम दोनों से। संगीत दिया था जयदेव ने और बोल थे साहिर लुधियानवी के।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म ज्वेल थीफ से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: आप सुन रहे पूर्वा सुहाने कार्यक्रम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म ममता से लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है रोशन ने और बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: इस गीत के साथ ही पूर्वसुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। 8 बजने वाले हैं। अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र

0: महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि

0: गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया

0: जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ते लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ते ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ, श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Center reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country.

अर्थ फिल्म से ये गीत लिया है हमने चित्रा सिंह की आवाज़ में, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने और बोल हैं इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी के। आप सुन रहे हैं हिट्स सुपर हिट्स प्रोग्राम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने, और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

0: कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आप सुन रहे हिट्स सुपर हिट्स प्रोग्राम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत लिया है हमने फिल्म गाइड से। संगीत दिया है SD बर्मन ने और बोल हैं शैलेंद्र के।

फिल्म गंगा जमुना से ये गीत सुन रहे हैं आप, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीत दिया है नौशाद अली ने और बोल हैं शकील बदायूनी के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। अगला गीत लिया है हमने फिल्म हम दोनों से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी के, जिसे संगीत से सजाया है एस टी बर्मन ने, और बोल हैं हसरत जयपुरी के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, हिट्स सुपर हिट्स प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म शर्मीली से। आवाज़ है किशोर कुमार की, बोल है नीरज की और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र।

0: 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार

0: की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमोचेक प्रमाण पत्र व आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धारा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहाँ की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लेन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। हम उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
1: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार प्राप्त होगा।
0: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनावमुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्र छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित हैं जो तरह तरह के पेठे बना रही हैं। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
4: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बढ़ेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
3: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPD

0: ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। एसपीडीए की कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। एसपीडीए क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर एचपीडीए के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, सीएचसी, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने करबला के शहीदों को शहादत को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: देशभक्ति गीत सुनिए।

0: द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे आप एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। संगीत दिया था एआर रहमान ने और बोल थे समीर के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। अब सुनिए लखनऊ केंद्र से उर्दू प्रोग्राम।
1: चार सौ एक दशमलव छः एक मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
2: सामीन को इरम का आदाब। आज की ये मुलाकात किसी शहर की सैर भर नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब से रूबरू होने का बहाना है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, लखनऊ। जी हाँ जनाब, लखनऊ भी क्या खूब शहर है। नाम लीजिए तो यूँ महसूस होता है जैसे कोई पुराना दर खुल गया हो और यादों की पूरी एक अलमारी खुल गई हो। कहीं चौक की पुरअसरार गलियाँ, कहीं अकबरी गेट की रौनकें, कहीं कबाब की उठती हुई खुशबू, कहीं चिकनकारी की नर्म तहें, और इन सब के दरमियान एक आवाज आज भी फिजाओं में तैरती हुई सुनाई देती है। जनाब पहले आप कहते हैं कुछ शहर नक्शे में बसते हैं और कुछ लोगों के दिलों में। लखनऊ उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ दीवारें भी गोया गुफ्तगू करती हैं, छज्जे भी अदब से झुकते हैं और दरवाजे भी दस्तक से पहले मुस्कुरा लेते हैं। लखनऊ वालों से अदब पर गुफ्तगू करना, जबान की बात

करना, सुखन की बात करना कुछ ऐसा ही है जैसे कस्तूरी मृग के सामने खुशबू का जिक्र करना, क्योंकि यहाँ जबान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रिश्ते निभाने का सलीका है। नवाबी दौर से चली आती ये रवायत आज भी फिजा में मौजूद है। वक्त बदला, रफ्तार बदली, लिबास बदले, बाजार बदला, लेकिन लखनऊ की असल शनाख्त उसकी जबान आज भी वैसे ही है। और इसी दिलचस्प दास्तान के साथ आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जबान खाने वाली और बोलने वाली दोनों ही जिंदा हैं लखनऊ में। आपने देखा होगा आम शहरों में महज लोग बसर करते हैं, लेकिन लखनऊ में जनाब एक अंदाज़े जिंदगी रहता है। ये शहर महज सड़कों पर नहीं चलता, ये शहर बातों में धड़कता है। यहाँ क्या हाल है यूं ही नहीं पूछा जाता, हुजूर मिजाज़े आली कैसे हैं आप? और बस यही एक जुमला इस बात की गवाही देता है कि आपके कदम लखनऊ की सरजमीन पर हैं। लखनऊ की ये शीरीन जबान जिसे जमाना लखनवी उर्दू के नाम से जानता है, उसमें सिर्फ उर्दू की नफासत ही नहीं बल्कि अवध की चाशनी भी घुली हुई है। यहाँ महज बात नहीं की जाती बल्कि लिहाज ज्यादा बढ़ता जाता है। हुजूर अगर नागवार ना गुजरे तो एक अर्ज करूँ, जनाब नागवार गुजरना तो गैरों का काम है, आप तो अपने हैं। यही तो है लखनऊ का तर्ज बया। यहाँ शिकवा भी मुस्कुराकर अदब के दायरे में रहकर किया जाता है। अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा है, और रंजिश वो भी कुछ इस दिलकश अंदाज में बयां होती है। आपसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही वाबस्ता कर ली थी हुजूर, यानी बात वही शिकवा वही, लेकिन लिहाज ऐसा शीरी कि सामने वाला नाराज होने के बावजूद मुस्कुरा उठे। यहाँ बहस तलवार की मानिंद तीखी नहीं होती बल्कि रेशमी रुमाल की तरह रूह को सहलाती है। इख्तिलाफ भी तहजीब के पैराहन में लिपटा होता है। पुराने लखनऊ में खवातीन की गुफ्तगू को बेगमाती जबान का रुतबा हासिल था। इतनी साफ, इतनी नफीस की जैसे गुफ्तगू नहीं हो रही हो बल्कि इत्र की खुशबू फिजा में घुल रही हो। बेगम साहिबा अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जुर्रत करूँ? फरमाइए, आपकी बात सराखों पर यानी घर के सहन और ड्योड़ियों में भी अदब की रवायत बरकरार रहती थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्ग हों या छज्जे से आवाज देती कोई अम्मा, हर पुकार में अपनायत का एक समंदर होता था, बेटा जरा इधर तो आइए, और बस इतना सुनते ही सामने वाले का दिल पसीज जाता था। यहाँ बच्चों को महज बोलना नहीं सिखाया जाता था बल्कि गुफ्तगू का सलीका और बातचीत का करीना घुट्टी में पिलाया जाता था। बरखुरदार, बड़ों की आमद पर अदब से उठकर सलाम कीजिएगा, यानी लखनऊ में तहजीब किताबों के सफ़ों से कम घर के दालान, सहन और बरामदों से ज्यादा सीखी जाती थी। तो जनाब बोलने वाली जबान का ये हसीन सफर यहीं नहीं रुकता, क्योंकि लखनऊ में बातों की चाशनी सिर्फ दीवान खानों तक महदूद नहीं रहती बल्कि बाजार के कूचों तक चली आती है। अब जरा रुख करते हैं सब्जी मंडी की जानिब, क्योंकि यहाँ खरीदारी नहीं होती, यहाँ तो एक महफिल जमती है। मियाँ भिंडी किस भाव दी? तो सामने से पहले एक अदब भरी मुस्कुराहट मिलेगी और फिर कुछ यूँ जवाब आएगा, जनाब पहले तौल तो लेने दीजिए, दाम आपकी मर्जी और पसंद के मुताबिक तय हो जाएंगे। और अगर आपने कहीं शिकवे के तौर पर कह दिया मियाँ कुछ महंगी मालूम होती है, तो आगे से जवाब हाजिर होगा, अरे हुजूर महंगी कहाँ, आजकल सब्जियां भी इस शहर के मिजाज की मानिंद बेहद नाजुक मिजाज हो गई हैं। बस यही तो है लखनऊ, यहाँ खरीदो फरोख्त भी एक खूबसूरत गुफ्तगू में ढल जाती है। अब जरा रुख कीजिए चखने वाली जबान की जानिब, क्योंकि लखनऊ का जिक्र हो और यहाँ के जायके की बात ना हो तो दास्तान लखनऊ अधूरी रह जाएगी। ये वो तारीखी शहर है जहाँ कबाबों की सुलगती खुशबू भी फिजाओं में अदब घोलती हुई उठती है, जहाँ शिरमाल महज एक मैदे की रोटी नहीं बल्कि मेजबान के खुलूस का खुला इकरार है, जहाँ बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं अवध की पहचान बन चुकी एक मुकम्मल रिवायत है, जहाँ दावतें पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए दी जाती है। हुजूर थोड़ा और लीजिए, आप लाख मना करेंगे? अरे जनाब अभी तो दस्तरखान की रौनकें शुरू हुई हैं, ये तो महज इब्तिदा है, आप फिर इनकार करेंगे? अरे हुजूर हमारी तवाज़ो को इतना भी कमजोर ना समझिए, जरा सा और फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि लखनऊ की सरजमी पर मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता बल्कि खानदान का एक फर्द हो जाता है। जब शामे अवध ढल रही हो और किसी कूचे से सीख कबाब की खुशबू परवास कर रही हो, तो यकीन मानिए पेट भरने से पहले

यादों को लगती है। यहाँ खाना सिर्फ लज्जत नहीं देता, एक जमाना बयान करता है। हर रेसिपी के पीछे एक किस्सा है, हर दस्तरखान के पीछे एक जज्बा है और हर निवाले के साथ एक दुआ। यहाँ कई पकवान ऐसे हैं जो सिर्फ बावर्ची खाने में तैयार नहीं हुए, बल्कि सदियों की तहजीब के चूल्हे पर पके हैं। सच तो ये है कि लखनऊ का दस्तरखान जितना वसी होता है, उतना ही कुशादा इस शहर का दिल भी होता है। शाम के ढलते ही चौक के कूचों में तरह तरह के जायकों की खुशबू परवाज करने लगती है। कहीं कबाबों की महक, कहीं निहारी कुलचों की सौंध, तो कहीं शिरमाल की रंगत। हर दुकान जैसे अपने माजी की कोई दास्तान सुना रही हो। हुजूर, पहले चख लीजिए, फिर फैसला कीजिए। यानी यहाँ खाने का फैसला भी जबान करती है और बात करने का सलीका भी। जब लखनऊ के जायकों की बात हो तो मक्खन मलाई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। सर्दियों की वो धुंधली सुबह, ओस की पाकीजा नमी और मिट्टी की सिकोरी में सजी हुई जाफरानी मक्खन मलाई, गोया किसी ने बादलों का कोई मखमली टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। एक लुकमा मुंह में जाते ही यूं घुल जाता है जैसे कोई ख्वाब, और उसके साथ घुल जाती है पुराने लखनऊ की मीठी यादें। गुजरे जमाने के घरों के दस्तरखानों पर सिर्फ नेमतें नहीं चुनी जाती थीं, उनके साथ में अदब भी परोसा जाता था। नौनिहालों को तरबियत भी दी जाती थी, बेटा पहले मेहमान की खिदमत में पेश कीजिए। और यही वजह थी कि खाने वाली जबान सिर्फ लज्जत तक महदूद नहीं रही, वो रिश्तों की जबान बन गई, खुलूस की जबान बन गई, अपनापन जताने का जरिया बन गई। यहाँ किसी के घर जाना और बिना ज़ियाफ़त के लौट आना तकरीबन गुस्साखी में शुमार किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में महफिल दस्तरखान महज खाने का नाम नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना भी है। और अगर किसी लखनवी ने आपको एक प्याली चाय के लिए रोक लिया तो समझ लीजिए वो सिर्फ चाय का इसरार नहीं कर रहा, वो अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है। क्योंकि यहाँ चाय में शक्कर कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेजबान के खुलूस में कभी कमी नहीं आ सकती। हुजूर, एक प्याली और हो जाए। और बस यही ये बात वाजे होती है कि लखनऊ में चखने वाली जबान पेट से ज्यादा दिल का रिश्ता कायम रखती है। यहाँ जायका सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरता, बल्कि यादों में बस जाता है। और शायद इसीलिए जो एक बार लखनऊ की लज्जत चख ले, वो उम्र भर भूल नहीं पाता। लेकिन लखनऊ सिर्फ जायके और अदब का शहर नहीं, ये सुखन का शहर भी है, नशस्तों का शहर भी है और अल्फाज को तहजीब का पैराहन पहनाने वाला शहर भी। तो आइए अब रुख करते हैं लखनऊ की उस सहरंगेज दुनिया की जानिब, जहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महफिलों में तराशे जाते हैं। लखनऊ की जबान का जिक्र हो और शायरी का जज्बा अंगड़ाई न ले, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। ये वही सरजमीन है जहां कभी शामें महज ढलती नहीं थी बल्कि आरास्ता हुआ करती थी, जहां चौक की गलियारों से लेकर नवाबों की कोठियों तक गजलों की सदाएं गूंजती थी। यहाँ लोग सिर्फ शेर नहीं कहते थे जनाब, यहाँ लोग शेर जीते थे, अर्ज किया है। और बस इस एक सदा के गूंजते पूरी महफिल खामोश हो जाती। किसी के हाथ में चाय का प्याला होता, किसी के हाथ में पान की गिलोरी, और सबकी निगाहें शायर के तर्ज बयां पर टिक जाती थी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। लखनऊ की यही तो खासियत रही है, यहाँ अल्फाज को भी तहजीब का जामा पहनाया जाता है। यहाँ गुफ्तगू भी एक फन है और खामोशी भी एक हुनर। कहते हैं अगर किसी को टोकना भी मकसूद हो तो लोग यूं इल्तिजा करते हैं, हुजूर एक गुस्ताखी की इजाजत चाहूंगा। यानी शिकवा वही, मगर अंदाज ऐसा कि सामने वाला नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दे। यहाँ की महफिलें सिर्फ सुखन और शायरी की नहीं थी बल्कि वो रिश्तों के आशियाने की भी थी। लोग एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते थे, समझते थे और फिर दिल से दाद देते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट की गुफ्तगू 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन उस सुनहरे दौर में महज एक अदद शेर पर पूरी महफिल घंटों तक दाद देती रहती थी। लखनऊ में अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते थे। जनाब अगर लखनऊ की तहजीब को कहीं सबसे करीब से देखना हो तो किसी आलीशान इमारत में नहीं बल्कि किसी नुक्कड़ की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ जाएं। वहां आपको पूरा लखनऊ सिमटा हुआ मिल जाएगा। यहां चाय सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि बातों की चाशनी में घोली जाती है। एक कुल्हड़ चाय।

और घंटों की गुफ्तगू, किसी को सियासत की तश्वीश, किसी को खेल का शौक, किसी को अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल की फिक्र, तो किसी को गुजरे हुए दिनों की याद। लेकिन एक बात सब में मुश्तरका होती है, बात करने का सलीका और लहजे की नरमी। जनाबे अली, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, किसी का नजरिया जानने का भी कितना दिलकश अंदाज है। और पान, अरे हुजूर, पान तो लखनऊ का दस्तखत है, यहाँ की शनाख्त है। यहाँ पान सिर्फ खाया नहीं जाता बल्कि बेहद एहतराम के साथ पेश किया जाता है। लीजिए हुजूर, अवध की ये मखसूस गिलोरी कबूल फरमाएं। और अगर आपने कहीं इनकार कर भी दिया तो वो दोबारा पेश किया जाएगा, फिर तीसरी बार भी जोर देकर इल्तिजा की जाएगी, क्योंकि यहाँ मेहमान नवाजी कोई तयशुदा रस्म नहीं बल्कि दिल की एक पाकीज़ा आदत है। गुजरे जमाने में तो कई बड़े मामूलात और रिश्ते महज एक पान की गिलोरी पर तय हो जाते थे। किसी की दोस्ती, किसी की सुलह सफाई, किसी की मोहब्बत, सबकी इब्तिदा इसी खास गिलोरी से होती थी। यानी पान यहाँ सिर्फ एक जायका नहीं बल्कि दिलों की मिठास और आपसी ताल्लुकात का एक मुकम्मल जरिया भी है। जनाब, लखनऊ की बोलने वाली जबान और चखने वाली जबान के साथ साथ अवध की एक और मुनफरिद पहचान भी है, एक ऐसी शनाख्त जो लफ्जों से बोलती नहीं मगर बहुत कुछ बयां कर जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकनकारी की। चिकनकारी यानी कपड़ों पर बारीक धागों से लिखी हुई एक खामोश गजल, सफेद मलमल पर उभरते हुए नाजुक और नफीस बेल बूटे। इन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी मुसव्विर ने कपड़े पर शेरों की नक्काशी कर दी हो। इसका हर एक बूटा अपने दामन में सदियों की मेहनत समेटे हुए है। सदियों से अवध के ये बाकमाल दस्तकार इस नायाब मीराज के जरिए दुनिया भर में सुरखरू हैं। बेटा, ये हुनर उजलत का मोहताज नहीं, इसमें इम्तिहाई सब्र और वक्त की आंच लगती है। और शायद यही बात लखनऊ की इस पूरी तहजीब पर भी सादिक आती है। यहाँ रिश्ते भी उजलत में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते हैं। गुफ्तगू भी ठहर ठहर कर होती है और मोहब्बत भी हमेशा अदब और लिहाज के साए में की जाती है। सच तो ये है कि चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर की गई कशीदाकारी नहीं बल्कि लखनऊ की रूह का नूरानी अक्स है। तो जनाब, हर शहर के दामन में उसकी कुछ यादें होती हैं, लेकिन लखनऊ का मामला जरा जुदा है। ये शहर अपनी यादों को किसी मुकद्दस अमानत की तरह सीने में लगाकर रखता है। एक दौर था जब इस पूरे शहर की सड़कों पर तांगे और बगियां चलती थीं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बिना किसी जल्दबाजी के, मानो ये शहर गुजरने वाले राही से इल्तिजा कर रहा हो, जरा ठहर जाइए हुजूर, पहले जिंदगी को जी भर कर महसूस तो कर लीजिए। हुजूर, कहाँ तशरीफ ले चलने का हुक्म है? और अगर आपने कहीं उनसे रास्ता भी पूछ लिया तो पहले एक अदब भरा सलाम मिलेगा और फिर कुछ यूं जवाब आएगा, हुजूर, मंजिले मकसूद तक तो पहुँचा ही दूंगा मगर रास्ते में आपको लखनऊ का दीदार भी कराते चलेंगे। और सच पूछिए, लखनऊ को देखने और समझने का सबसे बेहतरीन रास्ता खुद लखनऊ वालों के दिलों से होकर ही गुजरता है। पुरानी हवेलियां, पुराने झरोखे, इमामबाड़ों की शानो शौकत, रूमी दरवाजे की अजमत और चौक की गलियों की रौनक सब मिलकर एक ऐसी हसीन तस्वीर बनाते हैं जो वक्त के थपेड़ों से कभी धुंधला नहीं होता। पुराने लखनऊ में शाम का एक अलग ही रंग हुआ करता था। छतों और सहन में चारपाइयां बिछ जाती थीं। फिर आगाज होता था दास्ताने गोई और गुफ्तगू की उस रिवायती महफिल का। कोई पुराना किस्सा छेड़ता तो कोई नया सुनाता और वक्त चुपचाप गुजर जाता। आज बहुत कुछ बदल गया है, जमाना आगे बढ़ गया, लेकिन यादें आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हैं और उसी पहले आपके इंतजार में। तो जनाब, वक्त का पहिया कभी थमता नहीं, हर शहर बदलता है, हर नया दौर अपने साथ एक नई रफ्तार लेकर आता है। हमारा लखनऊ भी बदला है। अब चौक की तंग गलियों के साथ साथ चौड़ी और कुशादा सड़कें हैं। पुराने तांगों की जगह अब मेट्रो की तेज रफ्तार ने ले ली है। पुराने खतूत की जगह अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना है। अब लोग वीडियो कॉल पर मुलाकात कर लेते हैं और महज एक क्लिक पर दुनिया भर की खबरों से आगाह हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम जाहिरी तब्दीलियों के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी टस से मस नहीं हुई हैं। आज भी अगर कोई मेहमान घर आ जाए तो पूरे घर का

0: माहौल बदल जाता है। अरे बेटा, पहले ठंडा पानी का गिलास तो लाइए, मेहमान तशरीफ लाए हैं। भाई साहब, आप यहाँ तशरीफ रखिए। देखिए, महज दो लफ्ज़ हैं, लेकिन इन्हीं दो लफ्जों के साए में पूरा लखनऊ सांस लेता है। नए जमाने की एक नस्ल अंग्रेजी बोलती है, जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, दुनिया भर में आला ओहदों पर फराइज हैं, लेकिन जब अपने आशियाने को लौटती है तो दादी अम्मा की दुआएं भी लेती है और बड़ों को निहायत अदब से तस्लीम भी करती है। यही तो हमारे लखनऊ की असल खूबसूरती है। ये शहर वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बाबा व अजदाद की विरासत को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता है। आज नए लखनऊ में आलीशान मॉल्स हैं, कैफे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, जगमगाती रोशनी है और एक तेज रफ्तार है, लेकिन पुराने लखनऊ का अक्स अब भी इसके कदम ब कदम साथ चलता है। रूमी दरवाजा आज भी अपनी अजमत के साथ सीना ताने खड़ा है, इमामबाड़े आज भी गुजरे दौर की दास्तान सुनाते हैं और चौक की गलियां अब भी मुस्कुराकर राहगीरी का इस्तकबाल करती हैं। ये शहर लिबास बदलता है, मिजाज बदलता है, मगर अपनी रूह कभी नहीं बदलता। तो जनाब, लखनऊ महज एक शहर का नाम नहीं, लखनऊ तो एक एहसास है, एक दिलकश अंदाज है, एक पाकीज़ा रवायत है, फिजा में रची बसी एक सौंधी सी खुशबू है, एक मखमली आवाज है, एक लाजवाब जायका है, और इन सब से बढ़कर लखनऊ एक जीती जागती तहजीब का नाम है। यहाँ बोलने वाली जबान भी जिंदा है और चखने वाली जबान भी। यहाँ लफ्जों में शीरी बयानी है और पकवानों में बेपनाह लज्जत और मोहब्बत। यहाँ शायरी आज भी महफिलों में सांस लेती है और अदब रोजमर्रा की गुफ्तगू में नुमाया होता है। यहाँ पान सिर्फ एक गिलौरी नहीं, मेजबान की मेहमान नवाजी है। यहाँ चाय सिर्फ एक प्याली नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना है। यहाँ चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर सुई धागे का हुनर नहीं, हमारी सदियों पुरानी साझी विरासत का अक्स है। और यहाँ पहले आप महज तो लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी बसर करने का एक मुकम्मल फलसफा है। कितना मुख्तसर सा जुमला है, पहले आप, मगर इन्हीं दो लफ्जों के साए में लखनऊ की सदियों पुरानी तहजीब सांस लेती है। दूसरों को तरजीह देना, खुलूस और अदब से पेश आना और रिश्तों को पाकीजगी से निभाना, यही इस शहर का असल हुस्न है। जब तक इस शहर के किसी कूचे में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को दुआओं से नवाजता रहेगा, जब तक किसी आशियाने के दस्तरखान पर मेहमान की मिन्नत व असरार से तवज्जो होती रहेगी, जब तक किसी अदबी महफिल में कोई शायर अर्ज किया है कहकर आगाज गुफ्तगू करता रहेगा, जब तक किसी छोटी सी दुकान पर खरीदार को हुजूर कहकर पुकारा जाता रहेगा, और जब तक यहाँ के किसी मोड़ पर कोई अजनबी मुस्कुराकर कहता रहेगा जनाब पहले आप, तब तक हमारा लखनऊ जिंदा रहेगा, उसकी तहजीब भी, उसकी शीरी जबान भी, उसका बेमिसाल जायका भी और उसकी ये नायाब शनाख्त भी। इसी मौके पर अवध की इस नफासत को बयां करता एक दिलनशी शेर याद आता है। इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, एक ही आन में गुलाम किया। इसी अदब, इसी नफासत, इसी बेपनाह मोहब्बत और इसी मुनफरिद लखनवी अंदाज के साथ इरम को इजाजत दीजिए। आदाब।
1: लखनऊ की बोलने और खाने वाली जुबान। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम में। प्रेजेंटर थी इरम मिर्जा और कार्यक्रम की पेशकश थी आसिफ इकबाल की।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
3: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538। 0551 हमारा एसटीडी नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205।

0: 8686 अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के लिए।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज की फनकार हैं लता मंगेशकर।

0: टेक MBA, MCA, BBA, BCA, B Pharma, M Pharma और D Pharma में admissions open. KIPM, गीला गोरखपुर.
1: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को.

0: इसी के साथ सुगम संगीत का हमारा ये प्रोग्राम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। 10 बजने वाले हैं, दिल्ली केंद्र से समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेक्षण से संबंधित है। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश की ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सांणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS

0: पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावों और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। सरकार ने बैट, बीएमएस, ईपोक, आईआईएन और लॉसिकी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते। आप सभी को नेहा मिश्रा का नमस्कार। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गीत। आवाज़ है मुकेश की, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत की फरमाइश की है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, विभा श्रीवास्तव, तन्मय श्रीवास्तव और ब्रिजभूषण श्रीवास्तव ने मियां बाजार गोरखपुर से।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाण, चंद्रकला रेवाण ने, फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में, संगीत दिया है खयाम ने और बोल हैं साहिल लुधियानवी के।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर। संगीत दिया है मंसूर खान ने, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, आवाज़ है उदित नारायण साधना सरगम के, और इस गीत की फरमाइश की है अजय त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, रोहित पांडे, नौतनवा महाराजगंज से।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B फार्मा M फार्मा और D फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

अगला गीत लिया है हमने फिल्म कश्मीर की कली से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की, और संगीत दिया है ओपी नैयर ने। इस गीत की फरमाइश की है गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, ग्राम लुसडिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश।

अगला फरमाइशी गीत लिया है हमने फिल्म पाकीज़ा से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है गुलाम मोहम्मद ने, बोल हैं कैफ़ी आज़मी के। और इस खूबसूरत से गीत की फरमाइश की है सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया ने, ग्राम पंजौनिया ज़िला जालौन से।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गाते गुनगुनाते आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। लीजिए सुनिए अगला फरमाइशी गीत फिल्म कटी पतंग से। आवाज़ है किशोर कुमार का, संगीत दिया है SD बर्मन ने और इस गीत की फरमाइश की है नूपुर पांडे, रजनीश पांडे, संस्कृति और संस्कार पांडे ने। बेतियाहाता गोरखपुर से।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर।

0: हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गाते गुनगुनाते कार्यक्रम में अगली फरमाइश है सुखविंदर सिंह जौड़ा सीटी दीवाना की कृष्णा पार्क दिल्ली से। फिल्म का नाम है गोरा और काला, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल है आनंद बख्शी के और आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश की है। सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु, रितिका, वाणी, आरव, चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, संगीता, आरोही, प्रियांशी ने फिल्म साजन से ये गीत, आवाज़ है कुमार सानू की और अलका याग्निक की, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और बोल हैं समीर के।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। अगला गीत लिया है हमने फिल्म हमराज से। आवाज़ है महेंद्र कपूर की, जिसे संगीत से सजाया है रवि ने, और बोल हैं साहिर लुधियानवी के। इस गीत की फरमाइश की है ग्राम शिरटे ज़िला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा ने।

गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म अस्तित्व से। आवाज़ है सुखविंदर सिंह की, संगीत दिया है सुखविंदर सिंह ने और बोल भी हैं सुखविंदर सिंह के। इस गीत की फरमाइश की है निकिता और निहाल ने आरोग्य मंदिर गोरखपुर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। करों में बदलाव, माल ढुलाई में रुकावट और वैश्विक मांग में कमी के बावजूद इसमें 4.6%

0: की वृद्धि दर्ज की गई है। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए सुरक्षा और यातायात के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार और यहां की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कांसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
7: RHL गोल्ड DMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज के कलाकार हैं जय नारायण शर्मा। आइए सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जय नारायण शर्मा और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से अंतराल का।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।

0: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
1: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
0: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।
2: गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
4: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
4: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
4: गीतकार
3: और संगीतकार
4: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
4: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास।
3: गाते गाते गुनगुनाते
4: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
5: दूल्हा रूप रघुबर के देख के सखियां

0: जय नारायण शर्मा और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये भजन। आइए अब सुनते हैं विदाई गीत।
1: बड़ा रे जतन से हम

0: जय नारायण शर्मा और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये विदाई गीत। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज आप सुन रहे थे जय नारायण शर्मा और साथियों को। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। गीतांजलि कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आ रहा है रावण फिल्म से। एकॉन और विशाल दादलानी की आवाज़, बोल है कुमार के, संगीत विशाल शेखर का।

एक ऑन और विशाल दादलानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत रावण फिल्म से, बोल कुमार के, संगीत विशाल शेखर का। गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत प्रिया सरैया और जिगर सरैया की आवाज में। बोल लिखे हैं जयदीप साहनी ने, संगीतकार जोड़ी है सचिन जिगर की। फिल्म का नाम है शुद्ध देसी रोमांस।

प्रिया सरैया और जिगर सरैया की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म से। गीतकार थे जयदीप साहनी, संगीतकार सचिन जिगर। अगला गीत तनु विट्स मनो फिल्म से।

0: लेम्बर हुसैनपुरी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत तनु वेड्स मनोफम से। गीतांजलि कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म से बोल इरशाद कामिल के थे, संगीत था प्रीतम का। गीतांजलि कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बादशाहों फिल्म का गीत नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में।

नुसरत फ़तेह अली खां की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत बादशाहों फिल्म से। आइए अब सुनते हैं हिंदी मीडियम फिल्म का गीत गुरु रंधावा की आवाज़ में।

सुनिधि चौहान और अली जफर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत हे ब्रो फिल्म से। इस गीत का संगीत दिया था निट्स एंड सोनी ने, बोल थे प्रणव वत्स के। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं नाटक।

निखत, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अब यहाँ पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें? देखो, भला तुम्हें लगता है कि हम बस्ती से गुजर रहे हैं? सबके दरवाजे तो बंद हैं, दुकानों के शटर सभी गिरे हुए हैं। पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें? पर मुझे तो बेहद प्यास लगी है, गला सूख रहा है, अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती।

0: सचिन चलो कुछ दूर और चलते हैं, शायद रास्ते में कहीं पानी मिल जाए। देखो देखो वे घुड़सवार सिपाही अपने कोड़े लहराते इधर ही आ रहे हैं। अब हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए।
1: मुझसे नहीं चला जाता आगे, मैं तो यही बैठता हूँ इसी पत्थर पर। आओ तुम भी बैठो, दम ले ले फिर चलते हैं। घुड़सवार सिपाही क्या कर लेंगे हमारा।
0: रिपेन अकल से काम लो, हम किसी भी वक्त मुसीबत में फंस सकते हैं। वे तो आ रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं,
1: वे कुछ नहीं करेंगे। देखो देखो वे उधर चौक की तरफ मुड़ गए, हमारी सुनसान शांत बस्ती की ओर देखी मारने लगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, बस प्यास नहीं सही जाती निखार।
0: मैंने कहा ना विपिन, यहाँ तो पानी मिलने से रहा, और हमें अब घर पहुँचने में देर भी नहीं करनी चाहिए। अम्मी को पता लग गया कि छुट्टी हो गई है और गारद के लोग गश्त कर रहे हैं तो परेशान हो उठेंगी। वे यूँ भी मेरे लिए कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं।
1: ये सब सुनकर तो मेरी माँ का भी बुरा हाल होगा, और बापू तो मौका देखकर घुड़केंगे ही। कहाँ रह गया था उनका लाडला, जबकि सारा शहर किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। कल ही अविनाश भाई ने माँ से कहा शाम को किसी को बाहर ना जाने दिया करो।
0: क्यों, क्या अब हम शाम को खेलने नहीं निकला करेंगे? ऐसा भी क्या डरना। अरे हाँ याद आया, ये तो मामू भी कह रहे थे, कल शाम आए तो हम लोगों को अलग जाने को कहा, और देर तक अम्मी और अब्बा जान से कुछ बहुत राज की सी बातें करते रहे। आज तो मुझे कोई स्कूल भेजने को तैयार ही ना था, मैं ही जिद कर गई। विपिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
1: पगली मैं साथ हूँ, फिर क्या डर
0: है, पड़े आए जैसे मैं सचमुच डर गई। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है।
1: ये लो, अभी तो कह रही थी मैं डरती नहीं, अब सारी दुनिया का डर यहीं आकर इकट्ठा हो गया। देखो हम सदियों से ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे।
0: सदियों का हमें क्या पता।
1: क्यों, क्या सदियां नहीं बीतती हमसे?
0: तुम तो ऊंची ऊंची बातें करने लगे।
1: अच्छा अब हमें चलना चाहिए,
0: देर कितनी हो चुकी है छुट्टी हुए।
1: अच्छा खुदा हाफिज।
0: एक बार फिर कहना विपिन।
1: खुदा हाफिज।
0: विपिन तुम हिंदू हो?
1: मैं विपिन हूँ। क्या तुम मुसलमान हो?
0: मैं निकहत हूँ।
1: कल फिर मिलेंगे निकहत, स्कूल बंद हुआ तो क्या हुआ, मैं घर जाऊंगा। अच्छा और हाँ तुम्हारे लिए पीले फूल लाऊंगा, वही करने की जो

0: भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कल चलता रहा सारा शहर सच्ची झूठी खबरों से। कहते हैं लोगों ने एक पूरा खुशहाल कटरा जला डाला जिसमें 11 घर थे। कुछ जान बचाकर भागे और कुछ जलकर खाक हो गए। मुझे रात भर जगह जगह आग की लपटें दिखाई देती रही। कल हमारे साथ भी कोई रियायत ना हुई होती अगर विपिन के बाबू ने उन्हें चुनौती ना दी होती कि इस अहाते के भीतर कोई जाएगा तो उनकी लाश पर ही जाएगा। ये कौन नए लोग आ गए हैं हमारे शहर में? ये भीड़ कौन बनाता है? दंगाइयों की भीड़ जिसके पास आदमियत नहीं। अब्बू का तो हौसला ही पस्त हो गया। कहते हैं जिस बस्ती में एक लंबी उम्र बिताने वालों की जज्बातों और इंसानी रिश्तों का ख्याल ना रहा उसे छोड़ जाना बेहतर। सामान समेटा जा रहा है और हम शहर छोड़ के जाने की तैयारी में हैं। हम शायद अलग अलग ठिकानों में बड़े होंगे विपिन, पर हमें भूलना नहीं, और वो भी नहीं भूलना जो तुमने कहा था, पीले कनेर के फूल। हाँ,
1: निकहत ठीक कहती थी। कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है जो हमारे रिश्तों का गला घोट देगा। वो यूं ही नहीं कह रही थी। हम आज़ाद हुए हैं और अपने रिश्तों से उधर कर आज़ाद हुए हैं। कुछ अच्छे लोग जो हमारे नज़दीक थे अब यहाँ नहीं हैं। चीज़ें सब वही हैं, स्कूल भी वही, रास्ता भी वही, इमारतें वही, पेड़ पौधे वही, पर सब कुछ वैसा ही नहीं है जैसे पहले था। कल पंसारी का बेटा क्लास में सबको बता रहा था कि किन किन ठिकानों पर हथियार जमा थे, कहां कहां वे इस्तेमाल हुए, कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ी गईं

0: लोग खत्म हो गए बेघर, कौन लोग यहाँ से चले गए, ये सब बताते हुए उसके चेहरे पर एक खूंखार चमक थी। उसके जोश में ये दुख कहीं से शामिल नहीं था कि कितने बेगुनाहों के घर भी जलकर खाक हुए होंगे। इस आग में दरिंदे दोनों ओर जमा हैं, दीवार के दोनों ओर, और वे किसी में फर्क नहीं करते। मैं भीतर ही भीतर बेकाबू हुआ जा रहा था। किसी तरह मैंने अपने को संभाला, घर आकर अपनी किताबें बिखेरी तो उनमें एक नन्हा सूखा फूल दबा हुआ था, एक बैंगनी फूल जो निखत को बहुत पसंद था, जो अक्सर एक ना एक फूल मेरी किताबों में रख देती थी। निखत, देखो हम बड़े हो रहे हैं इन्हीं मीठी कड़वी यादों के सहारे।
1: समय कहां से कहां चला आया है, कितना कुछ बदल गया, कितने अच्छे बुरे साल आए और गए, कितने हादसे हुए जिनकी यादों के साथ वे बड़े हुए, लेकिन अलग अलग, यही हौसला लेकर कि अपने बीच फर्क की दीवार न बनने देंगे। वे बड़े हुए और कहां से कहां जा पहुंचे। विपिन बड़ा हुआ और निकहत बड़ी हुई। विपिन बड़ा हुआ और IIT में चला गया, निकहत बड़ी हुई और एक दिन जर्नलिस्ट बन गई। विपिन को फेलोशिप मिल रही थी, वो हॉस्टल में रह रहा था और यहीं से एक नए समाज की रचना का सपना देखने लगा था। सपना निकहत भी देख रही थी, लेकिन किसका, इस बारे में बहुत साफ नहीं थी।

आज मैं दफ्तर नहीं गई, अब कल ही जाऊंगी और अपना कॉलम पूरा करके ही उठूंगी। आज तो कितना आलस आ रहा है मुझे। तबीयत होती है चुपचाप लेटी रहूं, सूनेपन में खोई हुई, खिड़की पर आई हुई हिलतर देखती हुई। आज मेरी डायरी में उसका खत मिला, अम्मी जान रख गई थी चुपचाप। वे खुश तो हुई होंगी पर कहा नहीं कुछ। विपिन, मुझे तो लगता था कि तुम्हें बस ढूंढने निकलना पड़ेगा। लोग यही कहते रहे कि तुम खो गए हो हमारी दुनिया से और आते नहीं। इधर सादिक भाई सुबह शाम आते हैं। सादिक भाई को तुम नहीं जानते। सादिक भाई मुझे कहीं से भी अच्छे नहीं लगते। परवाएंगे तो एकदम पसर ही जाएंगे, वक्त ही नहीं देंगे सोचने का। सीधे कहेंगे चलो आज कुल्फी खाने निकलते हैं। सादिक भाई की दिलचस्पियों में तय है कुल्फी, सैर, सिनेमा। रजिया आपा सादिक भाई के बारे में एक दिलचस्प बात कहती थी कि वो पैदा होती इश्क करने लगे। अरे विपिन, मैं तुम्हें ऐसे बताने लगी जैसे तुम सामने हो, बस जानते ही हो सादिक भाई को। खैर, आओगे तो सादिक भाई को भी जाने बगैर न रहोगे। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं भी? सादिक भाई, पता है रजिया आपा आपके बारे में क्या राय रखती थी? आप दिन में किसी एक लड़की पर मर न ले तो आपका जीना मुश्किल हो जाए। आप हर रोज किसी न किसी पर मरते हैं और हर सुबह तरोताजा अपने शिकार पर निकलते हैं। कितना प्यारा मरना है आपका। रजिया आपा ठीक ही समझती थी, पर एक चीज मैं आप में नहीं देख रही हूं इधर। आप मजहब के कर चीखते क्यों हैं? एक दिन मैं पूछूंगी आपसे। मजहब तो हमेशा ही रहा है, तो अब क्या चीख चीख कर उसे बताना पड़ेगा? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा है कि आप आ ही रहे हैं। आपके सिवा दूसरा

0: जहर किस्मत।
1: लगता है बीबी मेरे लिए छुट्टी लेकर बैठी हैं।
2: चलिए कुछ खुश होने का बहाना तो मिला आपको।
1: हाँ भाई, हम तो बहानों पे जीते हैं। अपना तो ये हाल है कि वो आदमी की जो पत्थर था जी रहा है अभी, वो आदमी की जो

0: पत्थर था जी रहा है अभी, जो आईना था वो कब का बिखर गया मुझ में।
1: वाह वाह, क्या बात है, कहीं कुछ हो गया क्या? आज तो बहुत जज्बाती लग रहे हैं दादी भाई।
0: मुझे तो बीबी जज्बाती होने का मौका ही कम मिला।
2: कौन आया है?
1: दादी भाई या निजान, हाँ आपसे मिलने आए हैं।
3: क्या क्या क्या कह रही हो? आए मैं कोई फूफी से मिलने नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें कोई एतराज है?
1: नहीं नहीं, एतराज कहे का। आप बैठिए, अखबार पढ़िए, रेडियो सुनिए, कहिए, कोई कैसेट लगा देती हूँ आपके लिए, आपके पसंद के तो खैर यहाँ क्या मिलेंगे।
3: हाँ, मैं रेडियो से नहीं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ। ये क्या, तुम घर में भी हिंदी का अखबार मंगाती हो?
1: अखबार में हिंदी उर्दू का फर्क कैसा सादिक भाई? क्या आप भूल रहे हैं, मैं काम भी हिंदी अखबार में ही करती हूँ।
3: फर्क की बात तो बहुत अच्छी चलाई तुमने बीबी, अब तो तुम कहोगी।
1: तो कहूंगी ही, आप रहते किस दुनिया में है सादिक भाई?
3: जिसे अपने जंगल के घावों का पता नहीं, वो जंगल के फूलों पत्तों पे खुश होता रहे, ये सब कुछ मेरी समझ में तो आता नहीं। बीबी ये सब उसी बचपन के साथ ही, वो क्या कहते हैं कि विपिन का छेड़ा तार तो नहीं, जो हर वक्त बेसुरा बजता रहता है।
1: सुर की तमीज के बारे में मैं तो कुछ ना कहूंगी, पर खुदा के लिए सादिक भाई विपिन के बारे में आप कुछ मत कहिएगा, आपको मेरी कसम
3: है। मेरी कसम? चलो तुमने अपनी कसम के लायक तो समझा खाकसार को है। पर एक बात कहूं बीबी, पढ़ लिख तुमने जरूर लिया है, पर समझ के मामले में बच्ची हो।
1: माफ कीजिए सादिक भाई, चंद साल और वही रहना चाहती हूँ। आपकी जानकारियाँ आपको ही मुबारक हो।
2: किसकी समझ की बात हो रही है बेटे, निकाह को तो बहस का बहाना चाहिए, सोचने का रोग लगा है आजकल तो, बस विपिन के बारे में बहुत सोचती है।
1: अम्मी आप तो हद करती हैं, आप ही सोचती होंगी, मैं तो नहीं सोचती कुछ भी।
2: क्यों नहीं सोचूंगी भला, कैसे दिन थे, विपिन के बापू ने तो हमें जान पर खेल कर बचाया था, उसकी माँ अलग जान छिड़कती थी मुझ पर, कहती थी कुछ भी करूंगी आपसे पूछ कर ही करूंगी, विपिन की शादी नौकरी सब के बारे में आपकी राय लूंगी। जेठानी का सा रिश्ता जोड़ लिया था उन्होंने।
1: अम्मी मैं कुछ कपड़े धोने जाती हूँ, छुट्टी के दिन का कुछ तो फायदा हो, आप सादिक भाई से तब तक बातें करिए।
3: मैं भी चलता हूँ, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। निखत
1: जी,
3: मुझे अफसोस है कि मैंने आते ही गलत तार छेड़ दिया।
1: कुछ नहीं सादिक भाई, वो तो आपका हक है।
4: कौन? अरे यार खोलो भी, दिन रात पढ़ना पढ़ना, अमा देखो मैं किसे साथ लाया हूँ।
5: अभी आया।
4: अच्छा तो नरेंद्र भी है? आ भैया हाँ बैठो। विनोद तुम कल मिले तो तुमने कुछ कहा नहीं घर आने के बारे में, और आज निकले हो तो वो भी निचाट दोपहरी में। ओह यार इस साल तो गर्मी बहुत जानलेवा पड़ रही है, अब बरसात होगी तो उमस और भी बढ़ेगी।
6: चलो मौसम पर तो तुमने बात शुरू कर दी, पर ये हम पहले बता दें आज बात मौसम पर नहीं होगी।
4: फिर वो किस पे होगी ये भी तो बता दो।
6: बताएंगे बताएंगे, धीरज रखो और चाय का पानी पहले स्टोव पे रख दो।
4: अभी लो, अभी रख देता हूँ चाय का पानी।
6: ये हुई ना बात।
4: हाँ भाई अब बताओ कि बात किस पर होगी।
6: भाई सोचने के लिए कुछ वक्त तो दो।
4: हाँ हाँ सोचो।
6: अरे दरवाजा तो खुला ही रहेगा यार,
4: बंद
6: तो
4: कर दो। दरवाजा भी बंद कर देते हैं। हाँ, अब बताओ।
6: बात यह है विपिन कि मैं और नरेन पहले से तय करके आए हैं कि आज बात किसी खास विषय पर करेंगे।
7: और तय ये भी है कि कर्तव्य अधिकार के बारे में नहीं, दीन मजहब के बारे में नहीं, भाई देश या देश प्रेम के बारे में भी नहीं।
4: चलो भाई तो आज हम लोग सिर्फ वो प्रेम के बारे में बात करते हैं, ठीक है?
6: अरे ये तो ख्याल ही नहीं आया कि हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं।
7: क्यों? क्या तुमने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया?
6: ऐसा तो नहीं।
4: भाई सोच लो, यहाँ कुत्ते से प्रेम या बिल्ली से प्रेम वाली बात नहीं हो रही है।
6: फिर क्या वो प्रेम जो मीर

0: तकी मीर ने किया था
1: या वो जो चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामी से किया था?
0: क्या?
1: अरे यार, थी ना वो एक किताब जो हम इंटर में पढ़ा करते थे।
2: थी यार वो इंटर।
1: अच्छा, वो पंडित जी जो बहुत बहुत शर्माते थे, खास तौर से उस जगह जहाँ ध्रुव स्वामी को पाँव में भर लेता है चंद्रगुप्त, या फिर आगे जहाँ वो पंक्ति आती थी प्रेम का नाम न लो, वो एक पीड़ा थी जो छूट जाएगी। अरे जो भी हो यार।
2: अरे यार, वो जो देवदास ने पारों से किया
0: चंद्रमुखी से क्यों नहीं? यूं तो लैला मजनू, शेरी फरहाद, हीर रांझा, वामिक अजरा, रोमियो जूलियट, सोनी महिवाल।
1: अरे बस बस यार, प्रेम करने वालों की कुछ कमी रही है जो हम करेंगे।
3: तुम रहे घामड़ के घामड़ ही। अरे भाई मेरे,
2: मचा लेके आता हूँ।
1: आज हम अपने अपने खास प्रेम की बात करेंगे।
2: अच्छा,
1: प्रेम जो हमने किया सिर्फ हमने।
4: अरे भाई, ऐसा प्रेम तो शायद हमने कभी किया नहीं।
2: ये लो भाई अपनी अपनी चाय और चीनी, देख के बताओ। हूँ
0: विपिन, सोचो।
2: क्या सोचो यार?
0: जोर दो दिमाग पर।
2: हमारा कुछ कहोगे भी?
0: अब तो चाय भी आ गई है। अब सोचो, कुछ कल्पना करो, कोई रंगीन सी कल्पना। हाँ,
1: देखो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। एक माहौल बनाओ अपने इर्द गिर्द, जैसे जैसे नीली पीली रोशनियाँ गिर रही हैं और हम किसी का हाथ पकड़े रेती में भाग ही जा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: भागते ही जा रहे हैं और हमें तभी अचानक प्यास लगती है और हम उससे बेसाख्ता के उठते हैं। हमें प्यास लगी है, ऐसी प्यास जो बर्दाश्त नहीं होती। सोचो, अब सोचो।

0: मुझे तो बहुत प्यास लगी है।
1: अब यहाँ पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें? देखो, भला तुम्हें लगता है कि हम बस्ती से गुजर रहे हैं? सबके दरवाजे तो बंद हैं, दुकानों के शटर सभी गिरे हुए हैं। पानी कहाँ मिलेगा तुम्हें?
0: पर मुझे तो बेहद प्यास लगी है, गला सूख रहा है, अब प्यास बर्दाश्त नहीं होती।
1: सितिन, चलो कुछ दूर और चलते हैं, शायद रास्ते में कहीं पानी मिल जाए।
0: देखो देखो, वे घुड़सवार सिपाही अपने कोड़े लहराते इधर ही आ रहे हैं। अब हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए।
2: मुझसे नहीं चला जाता आगे, मैं तो यहीं बैठता हूँ इसी पत्थर पर। आओ तुम भी बैठो, दम ले ले, फिर चलते हैं। घुड़सवार सिपाही क्या कर लेंगे हमारा?
0: रिपेन, अकल से काम लो, हम किसी भी वक्त मुसीबत में फंस सकते। वे तो आ रहे हैं और इधर ही आ रहे हैं,
2: वे कुछ नहीं करेंगे। देखो देखो, वे उधर चौक की तरफ मुड़ गए, हमारी सुनसान शांत बस्ती की ओर देखी आने लगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, बस प्यास नहीं सही जाती निखार।
3: विपिन, ए विपिन, भाई मेरे बात क्या है, तुम तो बैठे ही बैठे सो गए।
4: सॉरी यार,
3: इसीलिए कहता हूँ रात रात भर जाग कर इस तरह ना पढ़ा करो, चाय ठंडी हो गई तुम्हारी। ऐसा भी क्या सोचना कि डूब गए हो कहीं जाकर। अब चलो पहले नरेन से शुरू करते हैं, क्यों नरेन?
4: नहीं, तुम्हें से बात शुरू।
5: यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है इस बारे में।
4: क्या नहीं सोचा?
5: अरे आखिर कैसे करते हैं प्रेम? क्या क्या वो पेड़ों के पीछे जा छुपना, सीटियां बजाना, नाव में लहरों से खेलते हुए गाना गाना, बर्फीली घाटियों में सुबह शाम घूमना टहलना, या फिर वो सब जो फिल्में दिखाती हैं? भाई मुझे थोड़ा वक्त दो
4: इस बात के लिए।
5: मैं कुछ करके दिखाता हूँ।
3: दिखाओ दिखाओ
5: दिखाओ,
4: प्रेम करके दिखाएगा।
5: मैंने अब तक तो माँ को छोड़ किसी से प्रेम किया
3: नहीं।
4: मेरा तो पेट दुखने लगा।
3: ये तो बहुत ही खराब बात है नरेन, तुम्हारी जिंदगी के 21 साल निकल गए चुपचाप इस तरह वीरान बिना प्रेम किए। ये भी कोई बात हुई क्या? आप जिंदगी भर फार्मूले पर फार्मूला रटते जा रहे हैं, इम्तहान पर इम्तहान दिए जा रहे हैं। भाईजान,

0: वह कहीं बड़ा इम्तहान है जिसे प्रेम कहते हैं, जिसमें पास फेल होना दोनों बराबर है।
1: यार विनोद, तुमने तो यार जरूर प्रेम किया होगा ना।
0: मैंने
1: हाँ?
0: विपिन देखो, मैं प्रेम की अहमियत तो जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि प्रेम मैंने अगर सचमुच किया है तो
1: किसे? बोलिए यार, तो अपनों से क्या शर्माना।
0: तो सबसे पहले
1: किसे?
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू से, फिर सुभाष चंद्र बोस से, और अभी हाल ही में अपने ही जैसे फिल्मी हीरो से।
1: अरे भैया, तुमने कपिल देव से क्यों नहीं प्यार किया? यार विनोद, तुम यार रह गए वहीं के वहीं। और नहीं तो क्या, हमें इतनी देर से तुम ये बेवकूफ बना रहे थे।
0: देखो देखो विपिन,
1: प्रेम के माने समझा रहे थे जनाब हम लोगों को, और अब बात इनके जबान पे आती नहीं।
0: ए विपिन,
1: क्या है?
0: देखो
1: क्या कर लोगे?
0: छोड़ो, हम अपनी जानकारी वापस लेते हैं, तुम ही बताओ।
2: हाँ विपिन, तुम ही बताओ प्रेम के बारे में।
1: ओके ओके, मैं बताता हूँ। हाँ यार, मैंने किया है प्रेम एक ऐसी लड़की से जो शायद बनी ही थी मुझसे प्रेम करने के लिए, जिसमें मुझे दुनिया की तमाम सुंदरता एक साथ दिखाई देती है।
0: हुँ?
1: जिसका दिल भी सुंदर है और दिमाग भी। हुँ? जो मुझे जीने का हौसला देती है।
0: अच्छा?
1: लेकिन देखो भाई, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा।
0: क्यों क्यों क्यों क्यों?
1: क्योंकि यार आज वो मुझसे परसों के बाद मिलने वाली।
0: नहीं, ये तो पता नहीं होगा।
1: देखो भाई,
0: पता नहीं होगा।
1: इसी बात पे आज की ये मीटिंग बर्खास्त, फिर मिलेंगे। हाँ यार, मिलना जो है।
0: नरेन, फिर अपना हश्र तो वही हुआ, घर के बुद्धू घर को आए। अच्छा विपिन, विश यू बेस्ट ऑफ लक।
2: ओके विपिन,
1: थैंक यू।

0: होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान, तू है देश की शान। तू कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, एक नया टीवी चैनल जहां होंगी बातें बदलाव की और आपके कल के बेहतर शुरुआत की। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की।
1: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मन पसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220 5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने सुहाने।
3: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
0: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
3: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
0: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
3: गाने के बोल,
0: गीतकार
3: और संगीतकार
0: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम
3: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
0: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास।
3: गाते गाते गुनगुनाते
0: सुनिए सुबह 10:05 पर।
3: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत दाग फिल्म से, बोल साहिर के, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नूरी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: नूरी फिल्म का गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत खयाम का था, बोल लिखे थे नक्श लयालपुरी ने। कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फासले फिल्म से। गीतकार थे शहरयार, संगीतकार शिव हरी। कार्यक्रम का अगला गीत अब आइए सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: किशोर कुमार के गाए हुए ब्लैकमेल फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेलिए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आपकी पसंद, आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत, हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच।
0: सुगम संगीत में आइए सुनते हैं पंकज उदास को।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंकज उधास को। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंकज उधास को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब नवीन रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी के साथ हवाई अड्डे से बीजेपी के रियासती दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकाम पर उनका इस्तकबाल किया। नई रियासती बीजेपी टीम की तश्कील के बाद ये उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अहदेदारों से कई तंजीमी मुलाकात करेंगे। वो बीजेपी के अवामी नुमाइंदों और एनडीए कायदीन से भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक्कदा शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब नवीन रियासती कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कल दोपहर वो प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महकमे सेहत और तिब्बी तालीम और मुख्तलिफ माहरीन के साथ एक आला सतही मीटिंग की और उत्तर प्रदेश स्टेट कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रामा एंड इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN की तरफ से पेश किए गए एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के हर जिले में कैंसर के इलाज की सहूलियात की तरक्की और सड़क हादसात और दीगर हंगामी हालात में सुनहरी घड़ी के अंदर इलाज को यकीनी बनाने के लिए रियासत गिर मरबूत ट्रामा और इमरजेंसी नेटवर्क के कयाम की हिदायत दी। एक रिपोर्ट।
2: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम देश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में तीन रोजा मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आम की मेले में 50 ग्राम अंगूरदाना आम और 5 किलोग्राम वजनी गजानन आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व श्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन, इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास। पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए। ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर जरा शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़रात और तमाम मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में

0: उन्हें मशविरा दिया जा सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनी रामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोजा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी जगत।

नमस्कार, मैं हूं मेनका और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम नारी जगत। पहनो ढेर सारी बातें और खूबसूरत गीतों के साथ आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहनो नारी जगत एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम महिलाओं से जुड़े ऐसे विषय पर बात करते हैं तो जो जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ समाज को एक नई दिशा देते हैं। तो पूरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम बात करेंगे एकता की, सहयोग की और आत्मनिर्भरता की। तो बहनों, आज बातों का सिलसिला हम शुरू करेंगे आज के दिन से। बहनों, आज है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ये हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे लोगों को ये बताना कि समाज में लोग एक दूसरे का जब हाथ थामते हैं तो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है बल्कि सामाजिक रिश्ते और भी अधिक मजबूत बनते हैं और विकास की राह तो आसान हो ही जाती है। बहनों, सहकारिता का अर्थ है एक दूसरे का हाथ थामना, एक दूसरे की ताकत बनना और मिल करके आगे बढ़ना। बहनों, देखिए, जब हम कोई काम करते हैं और उसे जब अकेले करते हैं तो लगता है कि ये काम मुश्किल है, लेकिन जब वही काम कई लोग मिल करके करते हैं तो वो काम बहुत आसानी से पूरा हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। यही है सहकारिता की सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि बहनों कहते हैं कि अकेला इंसान तेज चल सकता है लेकिन जब साथ मिलकर चलते हैं हम तो हम दूर तक जाते हैं। अगर आपको भी दूर तक जाना है तो सबका साथ बहुत ज़रूरी है। बहनों, सहकारिता की शुरुआत किसी एक मंच से नहीं होती बल्कि ये हमारे घर, परिवार और पड़ोस से होती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग की भावना रखें और ज़रूरत पड़ने पर मदद करें तो हम एक बेहतर और खुशहाल भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर ये संकल्प लें कि हम सहयोग, विश्वास और एकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। और बहनों, जब हाथ मिलते हैं तो सपने पूरे होते हैं और जब दिल जुड़ते हैं तो समाज मजबूत होता है और जब महिलाएं साथ आगे बढ़ती हैं तो विकास का काम, राष्ट्र के विकास का काम बहुत तेज़ी से होता है।

बहनों, फिल्म नया दौर का ये खूबसूरत गीत था। और ये बात सही है कि जब हम साथ मिलकर के कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। बहनों, महिलाओं के जीवन में तो सहकारिता का और भी विशेष महत्व है। आज देश के कोने कोने में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह और महिला सहकारी समिति से जुड़ करके अपने जीवन में बदलाव ला रही हैं। मैनू, हमारे समाज में एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। ये बात इन सहायता समूह और महिला सहकारी समितियों पर पूरी तरह से लागू होती है। जब कुछ महिलाएं एक साथ आती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं और अपने सपनों को साझा करती हैं, वे न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज और परिवार की तस्वीर बदल देती हैं। स्वयं सहायता समूह का मतलब है छोटे छोटे समूह जिसमें कि 10-12 महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और ये बचत ज़रूरत के समय समूह के किसी सदस्य के काम आती है। धीरे धीरे यही बचत बड़े सपनों को पूरा करने का आधार बनती है। बहनों, ऐसे समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कोई महिला सिलाई कढ़ाई कर रही है, कोई अचार पापड़ बना रही है, कोई डेयरी का काम कर रही है, अगरबत्ती बनाई जा रही है या फिर मशरूम का बिजनेस शुरू करती है। बहनों, इन समूह के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, बैंक से ऋण और अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलता है। और इसी तरह महिला सहकारी समितियां भी एक मजबूत मंच देती हैं। इसके माध्यम से महिलाएं मिल करके चीज़ें बनाती हैं, सामान की खरीदती हैं और सामान को बेचती हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाती हैं। इसमें बहनों लागत कम होती है और आय बढ़ती है। इन समूह की सबसे बड़ी ताकत इनका लाभ नहीं होता है, बल्कि इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका आत्मविश्वास और इनकी एकता होती है। जब महिलाएं एक साथ अपने अनुभवों को सीखती हैं, मुश्किल के समय में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं और मिल करके निर्णय लेती हैं, तो उनके भीतर नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इसलिए बहनों, आज ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इन सहायता समूह से और इन महिला सहकारी समितियों से जुड़ें, क्योंकि ये कमाई का माध्यम तो है ही, इसके साथ ही साथ ये महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को भी इससे आगे बढ़ने में कदम मिलता है।

गाइड फिल्म का ये खूबसूरत गीत था। और अब हम अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। बहनों देखिए, आज की समाज में हर महिला चाहती है कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे। अच्छी बात ये है कि इसके लिए हमें किसी बड़े निवेश की या फिर बड़े दुकान की ज़रूरत नहीं होती है। अगर महिलाएं मिल करके एक समूह बनाएं तो छोटे छोटे व्यवसाय से भी अच्छी शुरुआत की जा सकती है। बहनों, समूह में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और विश्वास, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कोई सामान की तैयारी कर लेता है, कोई पैकिंग का काम संभाल लेता है, कोई ग्राहक से संपर्क करता है और कोई पैसे का लेन देन देख लेता है। मैंने इससे काम बहुत आसान हो जाता है और तेज़ी से आगे भी बढ़ता है। आज महिलाएं घर से ही बहुत तरह के व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जिस चीज़ में भी उनका इंटरेस्ट है, जैसे कि अचार, पापड़, मसाले, घर का बना नमकीन लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और कुछ महिलाएं टिफ़िन सर्विस शुरू कर रही हैं, जैसे कि ऑफिस के जो बच्चे हैं या बाहर शहर से आए हुए हैं, उन्हें बना बनाया घर का खाना ऑफिस में मिल जाता है। महिलाएं टिफ़िन सर्विस कर रही हैं। अगर आपकी सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी है तो आप इसको भी कर सकती हैं। या जब भी मौसम आता है, दिवाली का, राखी का, तो इस तरह महिलाएं दिए बना सकती हैं, राखियां बना सकती हैं। और बहनों, प्लास्टिक का बैग जो अक्सर कर

हम भी बोलते हैं कि प्लास्टिक को अपने जीवन से दूर करिए, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो जूट का बैग बना रही हैं। तो इन चीज़ों को महिलाएं अपने घर का काम निपटा करके दिन भर आप इन चीज़ों को बना सकती हैं, और इन चीज़ों को आप स्थानीय मेलों में, प्रदर्शनियों में, या फिर स्वयं सहायता समूह या सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी चीज़ों को ग्राहकों तक बहुत आसानी से पहुंचा सकती हैं। पर बहनों, कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी व्यवसाय को चुना है और आपके इस समूह में जो भी महिलाएं हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि उन महिलाओं की रुचि उस चीज़ में हो और वो उस चीज़ में निपुण हों। इसके साथ ही किसी आपको बहुत बड़े निवेश की या बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे स्तर पर ही काम शुरू कर सकती हैं। पर सबसे ज़रूरी होता है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी से आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ग्राहक हमेशा अच्छी चीज़ चाहता है और उचित कीमत भी चाहता है। अगर आप शुरू में ही कीमत बहुत ज़्यादा रख देंगी तो लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, और अगर आप बहुत कम कीमत रख देंगी तो आपको इस बिज़नेस में लॉस होगा। इसलिए कीमत आप जब भी तय करिए, दो चार लोग मिल करके बैठ करके बात करिए, उसके बाद आप उस चीज़ की उचित कीमत करिए। इसके साथ साथ ग्राहकों का विश्वास जीतना भी बहुत ज़रूरी होता है, और यही विश्वास आगे चल करके व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। बहनों, सरकार और स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण देते हैं, बैंक ऋण उपलब्ध कराते हैं, और व्यवसाय शुरू करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आप इनसे जुड़ती हैं तो आपको और भी अधिक अवसर मिल सकते हैं। इसलिए अपने हुनर पर भरोसा करिए और एक दूसरे का हाथ थामिए, और मिल करके आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाइए।

बहनों, अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शहरों की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग अपार्टमेंट और हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पर भी सामुदायिक सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। बहनों, सैकड़ों परिवार एक ही परिसर में रहता है, पर अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण कई बार पड़ोस में कौन रह रहा है हम ये भी ठीक से नहीं जान पाते हैं। ऐसे में सामुदायिक सहयोग की भावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहनों, सामुदायिक सहयोग का मतलब ये है कि हम एक दूसरे का साथ दें, मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करें और अपने साथ रहने वाले लोगों की मदद करें, और साथ ही साथ हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक प्रयास करते रहें। बहनों, जब सोसाइटी में लोग मिल कर के काम करते हैं तो जीवन अधिक सुरक्षित होता है, सुविधाजनक होता है और खुशहाल बन जाता है। जैसे अगर हमें अपनी सोसाइटी को स्वच्छ रखना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, जल संचयन को बढ़ावा देना है या फिर कचरे का सही निस्तारण करना है, यानी अलग अलग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग उसका निपटान करना है, बिजली बचाना है, पानी बचाना है, ये काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं। ये काम हमें मिल करके अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से ये काम किए जा सकते हैं, और इसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उस सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं बच्चों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजन करा सकती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला सकती हैं और ज़रूरतमंद परिवार की मदद के लिए समूह बना सकती हैं। और कोई भी त्यौहार अगर आता है तो हम मिलजुल करके उसे जब मनाते हैं तो उस त्यौहार की रौनक ही निखर के आ जाती है, इससे आपसी भाईचारे को मजबूती मिलती है। बहनों, अगर सोसाइटी में किसी बुज़ुर्ग की सहायता करनी हो, किसी परिवार में कोई बीमारी हो तो मदद करनी हो, या किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करनी हो, तो पड़ोसियों का छोटा सा सहयोग भी बहुत बड़ा सहारा बन सकता है और यही अच्छे समाज की पहचान होती है। बहनों, इससे बड़ा लाभ ये होता है कि एक आपसी विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लोग एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने लगते हैं और बच्चों को सुरक्षित और अच्छा माहौल मिल जाता है। इसलिए आप जहाँ भी रहें, पड़ोसी से आपका संबंध अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे की आप मदद करिए, क्योंकि जब पड़ोसी साथ होते हैं तो हर चुनौती आसान बन जाती है और हर खुशी कई गुना बढ़ जाती है।

बहनों, इस खूबसूरत गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामती हैं तो वो केवल अपनी तकदीर नहीं बदलती बल्कि पूरे परिवार, समाज और देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब सहयोग, विश्वास और आत्मनिर्भरता की इस भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि सशक्त महिला ही सशक्त परिवार और राष्ट्र की पहचान बनती है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी जगत, ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार,
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर की

0: अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details, log on to www.ddindia.com।
5: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है कैल्शियम एवं फास्फोरस का पशु उत्पादन पर प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह।
6: जैसा कि पशुपालक भाई जानते हैं, जीवन के लिए आहार की आवश्यकता होती है। वैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को हम पशुओं को आहार के रूप में देते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। ये कौन से पोषक तत्व हैं, इसको हमारे पशुपालक भाइयों को जानना चाहिए, जिससे कि आपके पशुओं का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। खाद्य पदार्थ के रूप में जो भी पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं, उसमें 6 पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज मिश्रण एवं जल। इस सारे पोषक तत्व में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा केवल ऊर्जा के स्रोत होते हैं, पशु को ताकत देते हैं, साथ ही उसके शरीर के संरचनात्मक अवयवों के भाग भी होते हैं। साथ ही कुछ और तत्व जैसे विटामिन्स और खनिज मिश्रण, ये ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन दैहिक क्रियाओं को संचालन में इनका बड़ा ही अहम योगदान होता है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएँ पशुओं को झेलनी पड़ती है, आती हैं, दिक्कत होती है। तो इस तरह से आज चर्चा का विषय रहेगा खनिज मिश्रण, और इसमें भी मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस का दुधार पशुओं में किस प्रकार से इसका महत्व है, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जहाँ तक पोषक तत्वों के कार्य की बात है, तो मैंने बताया कि ये जो खनिज मिश्रण हैं, ये इसमें मुख्यतः 7 मुख्य खनिज होते हैं। साथ ही बाकी जो हैं वो सूक्ष्म खनिज तत्व होते हैं, जिनकी ग्राम में आवश्यकता या ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उनको हम मुख्य खनिज तत्व कहते हैं। जिनकी बहुत अति लघु मात्रा में, जिनको मिलीग्राम में हम कहते हैं, उसको सूक्ष्म खनिज कहते हैं। मुख्य खनिजों में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, इस तरह के होते हैं। अब हम आपको जहाँ तक कैल्शियम और फास्फोरस की बात है, अक्सर हमारे पशु भाई भ्रमित होते हैं कि ज़्यादा कैल्शियम पशुओं को दे दिया जाता है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और जब पशु ब्यांत की दशा में आती है या बच्चा देने की दशा में होती है तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं होता। यदि आपकी गाय कमज़ोर है और उसको आप कैल्शियम दे रहे हैं, अब बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि उस बच्चे को बड़ा हो जाने से और गाय के कमज़ोर हो जाने से इस तरह की दिक्कतें ब्याध के समय में होती है। हालांकि कैल्शियम का रोल बहुत अच्छा होता है उत्पादन को बढ़ाने में। सबसे पहले तो आप ये खनिज को भी समझ लें कि ये खनिज क्या होता है। जब भी किसी खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से आप जला दें और उसका

भस्म, जैसे वो सफेद अवयव जो बचता है उसी को हम खनिज कहते हैं। और खनिज में जैसा कि हमने बताया कि कैल्शियम, इसके बहुत सारे कार्य हैं। ये तो शरीर की हड्डी दांत बनने में इसका मुख्य योगदान होता है। इसमें हड्डियों में 90% तक या 90% तक इसमें कैल्शियम होता है। फास्फोरस लगभग 60% तक होता है। और हड्डियों का, दांत का विकास ज़्यादातर अगर कैल्शियम की कमी शरीर में हो जाती है तो ऐसी दशा में प्रभावित करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की जब कमी देखी जाती है, खास तौर से जब गाय गर्भित होती है, तो अंतिम 3 महीने में उसको 12 ग्राम कैल्शियम और 5 ग्राम फास्फोरस की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा उसकी आहार में कमी होने के बाद आप देखते हैं बहुत सारी समस्याएं पशुओं को हो जाती हैं। जैसे मैं कुछ समस्याओं का आपको बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहली समस्या आती है ब्याने के बाद दुग्ध ज्वर की। दुग्ध ज्वर ये ऐसी बीमारी है जब रक्त में कैल्शियम एवं फास्फोरस की इनकी कमी हो जाती है, तो तत्काल देखने को या बच्चा देने के 4-5 दिन के अंदर ही आपको दिखाई देने लगता है। इसके मुख्य लक्षण ये होते हैं कि पशु कमजोर फील करता है, और साथ ही वो देखेंगे तो अपना सर जो है बाई कोख की तरफ करके बैठा होता है। उसको किंकिंग ऑफ द नेक कहते हैं। ऐसे लक्षण अगर परिलक्षित होते हैं तो समझिए वो दुग्ध ज्वर के हैं। दूसरा, इसमें जो समस्याएं आती हैं प्रजनन संबंधित रोग। प्रजनन संबंधित रोग में यदि आप कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति आहार में अच्छे तरीके से नहीं किए हैं तो बहुत सारी विकृतियां, खास तौर से फास्फोरस की कमी से देखा जाता है कि उस पशु में अंडा ही नहीं बनता है, जिससे निषेचन प्रभावित होता है। और अक्सर हमारे पशुपालक भाई अपनी समस्याओं में ये कहते हुए मिलते हैं कि हम अपनी गाय को इतने बार सीमन चढ़ाए या इंसेमिनेशन करवाए लेकिन वो रुकती नहीं है, या बार बार गर्म होती है। तो ऐसी प्रजनन संबंधित बहुत सारी समस्याएं इस कैल्शियम और फास्फोरस कमी से देखी जाती है। दूसरा, एक समस्या था पाइका का, जिसको असामान्य भूख भी कहते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो इसके साथ साथ इनमें ये इस तरह की भूख डेवलप होती है जिसमें वो कंकड़, पत्थर, लकड़ी ये सब चबाते रहते हैं। तो इसके अलावा वृद्धि और विकास में भी इसका रोल है। जैसा कि हमने बताया कि इसका मुख्य जो संरचनात्मक कार्य में देखा गया है कि हड्डी और दांतों का विकास इन्हीं का होता है, तो इसमें वृद्धि और भूख की कमी का भी न्यूनता रोग देखा गया है। साथ ही रक्त में परिवर्तन, अगर कैल्शियम फास्फोरस की कमी शरीर में हो जाती है तो रक्त में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो कि आंतरिक अंगों के साथ साथ पशु की उत्पादन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। साथ ही अगर ये लंबे समय तक ये कमी बनी रहती है तो बच्चों में देखा जाता है रिकेट्स के, और जो प्रौढ़ पशु हैं उसमें अस्थि मृदुता के, जिसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बुजुर्गों में ही देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों में छेद हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं अगर आप कैल्शियम फास्फोरस की कमी करते हैं आहार में तो देखने को मिलती है। मुख्य रूप से अब हम उत्पादन की बात करते हैं तो जहां तक दुधार पशु में है, अगर आप एक सही समय से आहार में कैल्शियम फास्फोरस की पूर्ति नहीं करते हैं, खास तौर से ये समस्याएं उनको में देखी जाती है जो ज्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं। अगर प्रतिदिन उनका उत्पादन 10 लीटर से ऊपर का है तो ऐसे में आपको अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस की दूध में नितांत आवश्यकता होती है, उसको बनने में आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ वो दूध का एक भाग भी होता है। तो हम किस प्रकार से इनका प्रबंधन करें, आहार का प्रबंधन कैसे करें कि कैल्शियम और फास्फोरस की पूर्ति भी होती रहे और हमारे दुधार पशुओं का उत्पादन प्रभावित न हो, तो इसके लिए हम बताएंगे कि आप दाना स्वयं बनाया करें। और दाना में क्या बनाना है, दाना में आपको विभिन्न जो आपके कृषि उपजात हैं, उत्पाद हैं, इनके मिश्रण होने

इसके कुछ अनुपात होते हैं। जैसे आप खली देते हैं तो 20 से 30 केजी खली, 30 से 40 केजी चोकर, 15 से 25 केजी दलहनी फसलों के उत्पाद होने चाहिए, जिसमें आपका मसूर, चना, मटर, ये सब सारी चीजें होती हैं। 15

0: ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं तो आप एक अच्छे पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के आप खनिज और विटामिन मिश्रण का इसमें मिक्सचर भी कर सकते हैं और 1 kg लगभग 1 क्विंटल दाने में मिलाना चाहिए। साथ ही
1: साथ कैल्शियम एवं फास्फोरस का पशु उत्पादन पर प्रभाव, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को

0: मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल

0: मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान

के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित नेपाली कार्यक्रम।
1: प्रथम सुनोस लोकगीत सुचिता खातीको आवाजमा।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:56 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण अब समाप्त होता है। FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर प्रसारण जारी रहेगा। शाम 5 बजे मीडियम वेव के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: सुधाकर शर्मा, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुधाकर जी,
2: मंदाकिनी जी, नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
2: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती
1: है। बिल्कुल।
2: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
1: हाँ हाँ।
2: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: बिल्कुल।
2: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
1: हाँ।
2: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की कि चुनरिया पर ही आपको गीत लिखना?
2: नहीं, मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था।
1: अरे
0: मतलब और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव

0: से जुड़े होंगे।
1: जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नय्यर साहब के साथ भी की।
0: अच्छा।
1: ये सारी फाइलें जो है ना, वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो ना ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए, दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का
0: जी
1: अजीब कॉम्बिनेशन है।
0: जी जी
1: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं, उसमें
0: हाँ
1: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
0: अरे वाह।
1: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
0: हाँ
1: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया, और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
0: मानना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: उसके बाद मैंने दादू के साथ तीन पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी, मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंद्र जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया, और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
0: अरे वाह।
1: तो इतने ग्रेट थे,
0: जी
1: वरना कहाँ रविंदर जैन और
0: जी
1: कहाँ सुधाकर शर्मा,
0: जी
1: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
0: सही
1: देखिए
0: बात
1: रविंदर
0: है।
1: जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
0: जी
1: सकते।
0: जी जी
1: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
0: अच्छा।
1: और कश्मीर का राजमा है, एक
0: अरे
1: प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
0: हाँ,
1: हैं,
0: भूख
1: भूखे
0: लगी
1: प्यास लगी
0: होगी।
1: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन
0: बहुत।
1: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
0: बहुत खूब।
1: एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
0: हाँ,
1: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
0: गाना कौन सा है?
1: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूं। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: तो
1: जी,
0: मैं बेचैन हो गया। हमने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूं ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे पांच गाने तो सेलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं, ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया। और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह ने।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था, तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा।

0: अच्छा बनेगा, वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है,
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना, DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर, मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं। तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। और ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे।
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो।
1: बर्दाश्त
0: फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त के
1: बिल्कुल
0: कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता, फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकते।

0: गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है, वो कि अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है।
0: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे हैं।
1: लेकिन नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है, उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंद्र जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा,
1: मैं आ
0: वक्त
1: जाऊंगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
0: सोनू
1: गाना
0: निगम जी के पिताजी,
1: जी वो गाना गा रहे हैं, तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है,

0: करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहां कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
1: मिला।
0: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे। और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी
0: उसमें कोई
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी बात
0: नहीं।
1: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार के बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
0: जी
1: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
0: नहीं नहीं
1: आपने,
0: नहीं
1: और
0: नहीं
1: आपसे
0: नहीं
1: कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है
1: हाँ
0: वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूं मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
0: नहीं
1: आपके
0: नहीं
1: गीतों
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
1: हाँ
0: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ आ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
1: हाँ
0: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको
1: लेता
0: ले
1: है।
0: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
1: अच्छा
0: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता। हमने
1: अच्छा
0: फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
1: हाँ
0: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने नहीं
1: हाथों
0: लिखा।
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देता हूँ,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये
0: हाँ
1: एक्टर है
0: जो
1: ये
0: भी
1: फिल्म है,
0: सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में आप
0: हर
1: रहते
0: रिकॉर्डिंग
1: हैं।
0: में मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग होते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है, मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं।
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी, अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।

0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
0: एक
1: का।
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं।
1: जी।
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी।
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी।
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली,
1: ओडली
0: अच्छा, यहाँ पर
1: म्यूजिक,
0: भी चुनरी आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।

0: जी
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह,
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3 4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए
0: अच्छा
1: और हम लोग घर पे गए। तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र भी आप कर
1: जिक्र
0: रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश जी मेरे लिए इतना काम कर दो यार। उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं, सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
0: अच्छा
1: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2 3 सेशन हमारे मुश्किल गए, और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी हैं ना, जैसे सतीश जी कई बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है
0: जी
1: वो है।
0: जी जी
1: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
0: हाँ
1: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए यार कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
0: क्या
1: मेरे को
0: बात
1: यकीन नहीं हुआ
0: बात
1: कि
0: कर,
1: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
0: एक
1: 1 रुपया
0: रुपया
1: नहीं
0: नहीं
1: लूंगा।
0: लूंगा। वाह, अद्भुत
1: ये बहुत ही अद्भुत,
0: बात।
1: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3 4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता कि एक आदमी रेगुलर 5 6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
0: हाँ, सही
1: लेकिन मेरी
0: बात।
1: औकात ही क्या है, मैं क्या
0: हाँ,
1: करूंगा, कुछ भी नहीं कर
0: उनकी
1: पाऊंगा।
0: महानता देखिए आप, अमित
1: लेकिन
0: कुमार
1: उनकी
0: साहब।
1: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है ये बात अलग है, लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
0: जी,
1: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ,
0: बहुत
1: और मैं ईश्वर
0: बिल्कुल
1: से दुआ करता हूं
0: सैल्यूट है
1: कि
0: उन्हें।
1: बस वो खुश रहें स्वस्थ रहें एकदम।
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उन्होंने क्लियर किया
0: कि मैं कुछ नहीं लेने
1: मैं कुछ
0: वाला।
1: नहीं लेने वाला,
0: बहुत बड़ी बात सर,
1: तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूं।
1: नहीं,
0: एक गाना पहले सुन
1: ये
0: लेते
1: गाना हम लोग सुनते
0: हैं।
1: हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: दे।
1: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
0: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
1: नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते गाना जब लिख लिया मैंने, हिमेश भाई ने बना भी दिया, तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
0: बहुत सुंदर,
1: ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
0: आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
1: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
0: बहुत सुंदर, और वो हो गया। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
1: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन बट AI जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
0: सबसे बड़ी बात,
1: वो कहानी नहीं ला पाएगा, टेक्निक

0: चलिए वो
1: देगा।
0: साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के
0: जी
1: निर्माता
0: जी
1: नए नए आ रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं,
0: हाँ
1: बहुत
0: बहुत
1: नए सब्जेक्ट के
0: बिल्कुल
1: साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोड़ पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फूवर्ड पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे
0: लेकिन
1: तरीके
0: बड़े
1: से,
0: प्यार से कहा, एक
1: क्लासिक
0: अंदाज
1: तरीके
0: से
1: से।
0: कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: वहां वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल।
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो।
0: 97 में गाना बाहर आया ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस।
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूं
1: अच्छा।
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूं। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूं, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे।

0: तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं था, अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूं, तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं, तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, तीन गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए, अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं, मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। उन गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपये थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला।
0: जी
1: विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक
1: जी
0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब ये कभी मेरे ख्वाबों में थे। और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप
0: धन्यवाद
1: विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी
1: हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, मीडियम 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। सभा के आरंभ में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास

योजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल

0: बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समवेत स्वर में देश गान।
3: One, two, three, four.

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देश गान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सुराजी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और

0: जन जन तक ये बात जाए
1: जी।
0: और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
1: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
0: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में, और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में, जब मैं भर्ती हुआ तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ जब पेड़ पौधों की वजह से, पलान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
1: तो ये कब शुरुआत की आपने?
0: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
1: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
0: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
1: अच्छा।
0: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
1: जी,
0: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
1: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
0: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की गुठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
1: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
0: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
1: अच्छा।
0: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
1: अच्छा।
0: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उसपे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
1: अच्छा।
0: और उसपे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर सुनोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने, वहाँ की जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
1: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
0: सोनीपत में ही।
1: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो वो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
0: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खी

0: की संख्या बढ़ी तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है। और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया, समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले

0: वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांववासी माताएं, बहनें, युवा साथी एक बढ़ चढ़कर भाग लिया और गांव-गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव-गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर एनसीआर के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व, मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं, बहने, बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूं विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने एनसीआर की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके देश के।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल, चीनी या सब्जी लेनी होती थी, वो अक्सर पुराने कपड़े थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा

0: गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है। व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है, पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ, व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने का प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है, जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं, अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं।
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े, और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े, और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप

0: इतने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं।
0: अरे
1: जब
0: वाह,
1: हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूं पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल
5: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 MHz पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बच्चों का कार्यक्रम बालवाणी।

0: जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: लैका लोगन जय हिंद। भैया देखा, हाँ अपन
2: नारा लगाओ और अपन लैका लोग भी अपने कार्यक्रम का गोरन है कि आज उनके कौन नया जानकारी दिया जाए हम उनके अपने कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल,
2: और छुट्टी उट्टी तो लैका लोगन के बीती गई, अपन स्कूल
1: सही हो गई बा,
2: और लैका लोगन भी अपन जौन बा दैनिक स्कूल के कार्यक्रम में लग गई बात, पढ़ाई लिखाई में लग गई बात।
1: भैया एक बात ये कहे बा कि जैसे छुट्टी के बाद भइल है तो लैका लोग छुट्टी में का करे ले, खेले ले थोड़ा बहुत, पढ़े ले, खेले ले बहुत ज्यादा आ पढ़े ले बहुत कम।
2: हाँ हाँ,
1: तो ई जोन खेले वाला काम लोग करल है अभी तो बाने की भाई एक लैका खेली जाके फील्ड में दौड़े लगी, मैदान में दौड़े लगी, खेले लगी, भाई एकरे खातिर 2-4-10 लैकन के इकट्ठा करे पड़ाला।
2: हाँ,
1: तो तब भैया कोनो खेल हो पावाला।
2: हाँ भैया, कोनो भी खेल जब ले 2-4-10 लैके इकट्ठा ना हुई, एक तरह से कोनो समूह ना बनी, जब कोनो एक तरह से इकट्ठा ना हुई तब ले कोनो भी काम लैके खेल ना पाई।
1: बिल्कुल।
2: और भैया देखिए, हर दिन के कोनो कोनो अपन एक महत्व होला, और आज आपके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है।
1: भैया देखा, ई जोन सहकारिता दिवस के बात तू कैले
2: हा,
1: यही के पहले हम यह लैका लोग उनके बतौली हैं कि भाई जब 10-5 लैका लोग जुटी हैं तब कोनो खेल लोग खेल सकल है, और अगर कोनो काम करे के बा तो इसे बड़बर समूह बनावे के पड़ी और उनमें व्यवस्थित तरीका से काम करे के पड़ी।
2: बिल्कुल,
1: यह भावना जो है लेके सहकारिता के जो है उदय भइल कि भाई एक काम के बहुत सारा लोग मिल के करें, बांट के करें, तो वो काम बेहतर तरीका से हो।
2: भैया ये हर बरिस जौन बा जुलाई के पहला शनिवार के मनावल जाला, एक मुख्य उद्देश्य यह बा कि जौन सहकारी संस्था बांटने के सामाजिक आर्थिक और सतत विकास में जौन बा महत्वपूर्ण भूमिका के जौन बा रेखांकित कई जा, और लोगन के सहकारिता के प्रति जागरूक भी कई जा कि लोग इकट्ठा हो खें और इकट्ठा होके समूह में काम करें,
1: काम करें, और ओकर जौन भी काम बा ओके बेहतरी के प्रति भी ध्यान दें, और कैसे ही काम बेहतर हो, लोगन के सहयोग से कैसे ही काम आगे बढ़ सकाला और लोगन के में कैसे जोड़ल जा सकाला, ये कुल भावना के लेके जौन है ये दिवस मनावल जाता।
2: भैया देखी बात कही होत रही, लैका लोगन के कुछ मन मन साइन हो जाए, लैका लोग सुने ठो गीत।
3: इकड़ दुकड़ भंबे भो 80-90 भो

0: कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई

0: 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
0: गीतकार
1: और संगीतकार
0: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
0: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
0: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर,
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: हाँ भैया, अभी आप संदेश से पहले सुनत रह लैका लोग गीत, गीत के माध्यम से उनके पूरा मन मन साइन भइल। अब लगला थे सुनावल जानकारी भारतीय संविधान की विशेषताएं, डॉक्टर मनोज कुमार भारती जी से लैका लोग सुने।
8: भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ था। यह दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है। यह संविधान 25 भागों में विभाजित है। हालांकि संविधान निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और उनमें 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान इसकी प्रस्तावना से शुरू होता है। संविधान की प्रस्तावना में इसके आदर्श, उद्देश्य और बुनियादी सिद्धांत शामिल है। संविधान की मुख्य विशेषताएं इन उद्देश्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकसित हुई है जो प्रस्तावना से प्रवाहित होती है। हमारे संविधान ने देश की आवश्यकता के अनुसार विश्व के अधिकांश प्रमुख संविधानों की सर्वोत्तम विशेषताओं को अपनाया है। भारत के संविधान को विश्व का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को कठोर और लचीले बनाने का प्रयास किया गया है। किसी भी संविधान को उसकी संशोधन प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला कहा जा सकता है। भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसमें एक संघ की सभी सामान्य विशेषताएं शामिल है, जैसे दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। हालांकि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी शामिल है, जैसे एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और एकीकृत न्यायपालिका। भारत के संविधान सरकार की अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के बजाय सरकार की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को चुना है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली दो अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन

प्रणाली की स्थापना करता है। हमारे संविधान की विशेषताओं में मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया है। संविधान का भाग 3 सभी नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार शामिल है। ये अधिकार हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता है। इसकी समायोजन संविधान के भाग 4 में किया गया है। लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए नीति निदेशक सिद्धांतों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मूल संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को सूची प्रदान करता है। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अधिकार लोगों को गारंटी के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन कर्तव्य एक ऐसे दायित्व है जिन्हें पूरा करने की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। भारतीय संविधान की एक विशेषता धर्मनिरपेक्षता का होना है। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, इसलिए यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है, अर्थात सभी धर्मों का समान देना, सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना। भारतीय लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत के आधार पर कार्य करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, जाति, लिंग, नस्ल, धर्म या स्थिति के बावजूद चुनाव में वोट देने का हकदार है। भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति के माध्यम से भारत में राजनीतिक समानता स्थापित करता है। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक है। एक संघीय राज्य में आम तौर पर नागरिक दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, जैसा कि अमेरिका में होता है, लेकिन भारतीय संविधान में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है, चाहे उसका निवास स्थान या जन्म स्थान कुछ भी हो। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। साथ ही भारतीय संविधान कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त होने के साथ भारतीय न्यायपालिका को सक्षम करके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक प्रणाली के शीर्ष न्यायालय के रूप में काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, जो कि जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतों के रूप में काम करते हैं। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रक्षक है। संविधान निर्माताओं ने यह भी अनुमान लगाया था कि देश में कभी ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है जब सरकार को सामान्य समय की तरह नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352, 356 व 360 की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित की जा सकती है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि यदि राज्यों में संवैधानिक लोकतंत्र विफल होता है तो आपातकाल घोषित की जा सकती है। अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि यदि देश में वित्तीय संकट आ जाए तो आपातकाल की घोषणा
की जा सकती है। इस प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्कसंगत देश की संप्रभुता

0: एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में चले जाते हैं। संघीय से एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था का इस तरह का परिवर्तन भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, जो अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि भविष्य में हमारा संविधान कभी असफल होता है तो यह मत समझना कि बनाने वाला दोषी है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी आ जाए इसमें संशोधन द्वारा सुधारा जा सकता है।
1: हाँ भैया, बहुत बढ़िया जानकारी दी है डॉक्टर मनोज कुमार भारती जी, भारतीय संविधान की विशेषताएं विषय पे इन्हें नीमन जानकारी खरीदी जी, इनके धन्यवाद। आप भैया आज देखिए, आज गुलजारी लाल नंदा जी के जन्म जयंती है। आप भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात अर्थशास्त्री और दो बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। आप महात्मा गांधी से प्रेरित होकर 1981 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेली और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई बार जेल के यात्रा भी की। दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री आप, एक बार 1964 में और एक बार 1966 में आपके बनावल गई रहा है। और इनके भैया इतना निमन केंद्रीय मंत्री भी रहना, इतना निमन काम करती ना आपके, भारत रत्न से भी नवाजा 1997 में भारत रत्न दिया गई रहा है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
2: बिल्कुल भैया, हाँ सही कहा भैया। देखा अब लड़का लोगों की जानकारी भी हो गई, अब अपने कार्यक्रम के धीरे धीरे समय समाप्त हो गया। लड़का लोगों से लिहल जा, विदा चल जा।
1: लड़का लोग जय हिंद।

अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बालवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से क्रमशः भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वैष्णवी त्रिपाठी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सोमवार 6 जुलाई के अपने सदस्यन के बैठकी बुलौले है, जिमे ट्रस्ट की ओर से मिलल दान के गिनती की जांच कई रहल टीम SIT के निष्कर्षन के सतही कई गो महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलन पर विचार विमर्श कैल गए। 28 जून के जारी एगो आधिकारिक नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के अध्यक्ष के मंजूरी से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की ओर से बैठकी बुलावल गई है। इ बैठकी मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में आयोजित कैल जाई। बैठकी के कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर से प्रस्तुत त्यागपत्र पर विचार कैल शामिल बा। सदस्यन के ट्रस्ट के दान पेटीएम के जरिए से मिलल दान के गिनती के संबंध में SIT के आखिरी

रिपोर्टों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद सार्वजनिक महत्व के भूमि से जुड़ल मामला के जल्दी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण बदे बढ़न फैसला कैले हैं। अब आरक्षित श्रेणी

0: परिषद न्यायालय में इस श्रेणी के सद जो लंबित अन्यायवाद अब खास तौर से गठित 3 सदस्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर गई है। ए विशेष पीठ की ओर से हर बुध के नियमित रूप से ए मामलन के सुनवाई कई जाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिन के दौरा पर लखनऊ पहुंचले। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ ही कई गो मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी लोग उनका स्वागत कर लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में रोड शो कर लें। ए दौरा के दौरान वहां के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी लोग इनके साथ कई गो संगठनात्मक बैठकी कर भी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के तीसरका और आखिरी दिन के परीक्षा आज शांति के साथ पूरा हो गई। आखिरी दिन ने खाली एक पाली में परीक्षा के आयोजन कर गई। एगो रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय UPTET परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के दौरान आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा है कि UPTET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी अग्रिम सूचना के लिए आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग के बढ़ावा देवे खातिर सोलर आर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू कर गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा एक पर्यावरण संरक्षण के दिशा में खास कदम बतावत कहले कि इसे स्वच्छ आहरित ऊर्जा के उपयोग के प्रोत्साहन मिली। टैरिफ में ई छूट सवेरे 9 बजे से संझा 4 बजे ले मिली। प्रदेश सरकार एक जनपद एक व्यंजन योजना के अंतर्गत लौंगलता के वाराणसी जिला खातिर चुन ले हवे। ए व्यंजन के भौगोलिक पहचान GI टैग ओ हासिल बा। वाराणसी के उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी बतौले कि योजना में शामिल भैले से बनारसी लौंगलता के कारोबार से जुड़ल लोगन के प्रोत्साहन मिली।
2: सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन के रूप में बनारसी लौंगलता को जो कि ये 2025 में DI टैग है सम्मिलित किया है। इससे यहाँ के जितने भी लोग जो बनारसी लौंगलता बनाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं ला रही हैं। उस योजना में पहला है उनको ऋण दिया जाएगा जिसमें उनको 25% की छूट मिलेगी सरकार के द्वारा।
0: सोशल मीडिया पर ई दावा कई जा रहा है कि 20% इथेनॉल मिलल ईंधन से गाड़ियन के माइलेज कम हो जाला, जौन की गलत अभ्रामक बा। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया बढ़त पैमाना पर परीक्षण कैलस। ए परीक्षण में गाड़ियन के ईंधन दक्षता पर कौनो खास असर नहीं देखल गई। राज्य के मध्य और पश्चिमी इलाकन में कुछ जिलन में आज मानसूनी बरखा भइल। वहीं गोरखपुर के साथ ही पूर्वी जिलन में उमस भरल गर्मी पड़ल रहल। मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी इलाकन में बिहनहु उमस भरल गर्मी पड़ले के अनुमान जतौले है। समाचार पूरा भइल। नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार 6 जुलाई को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन की गिनती की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून को जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मणिराम दास छावनी अयोध्या धाम में आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ. अनिल मिश्रा द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्रों पर विचार करना शामिल है। सदस्यों को ट्रस्ट के दान पेटियों के माध्यम से प्राप्त दान की गिनती के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। राजस्व

0: की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। इसके तहत लखनऊ एवं प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणी के सभी लंबित और नए वाद अब विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों तथा पार्टी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ लखनऊ में रोड शो किया। इस दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की तीसरे और अंतिम दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतिम दिन सिर्फ एक पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय UPTET परीक्षा को पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के दौरान आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कहा है कि UPTET परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी अग्रिम सूचना के लिए आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में ये छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन योजना के अंतर्गत लौंगलता को वाराणसी जिले के लिए चयनित किया है। इस व्यंजन को भौगोलिक पहचान GI टैग भी हासिल है। वाराणसी के उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि योजना में शामिल होने से वाराणसी लौंगलता के कारोबार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।
2: सरकार ने एक जनपद एक व्यंजन के रूप में बनारसी लौंगलता को जो कि ये 2025 में DI टैग है सम्मिलित किया है। इससे यहाँ के जितने भी लोग जो बनारसी लौंगलता बनाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार योजनाएं ला रही हैं। उस योजना में पहला है उनको ऋण दिया जाएगा जिसमें उनको 25% की छूट मिलेगी सरकार के द्वारा।
0: सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% इथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। राज्य के मध्य और पश्चिमी हिस्से के कुछ जिलों में आज मानसूनी वर्षा हुई, जबकि गोरखपुर सहित पूर्वी जिले उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कल भी उमस भरी गर्मी जारी रहने का अनुमान जताया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है

0: 5120538 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: पंचो जय जवान जय किसान। भैया नारा लगल और अपन आज के बैठकी शुरू भइल। अपन पंच भाई लोग भी अपने बैठकी का गोरन ले कि आज कौन नया जानकारी हाँ मिली। हाँ भैया देखी, इस समय अपन पंच भाई लोगन जोन धान के जोन फसल बा ओकर रोपाई कुछ लोग कई रहल बाटे, इक्का दुक्का लोग कई भी दिहले बाटे, जे रेती खेती करल ते पहले से अपन तैयारी जे कैले, पहले से जे बेहन डार दिहल, बीया डार दिहल, जेकर बीया तैयार हो गई ते बारिश के इंतजार न कैलस, पानी उनी चला के अपन लोग रुपया शुरू कर दिए बाटे। लेकिन हमन के पंच भाई लोग के बराबर कहल जाला कि कौनो भी फसल के बुआई करे बा तो के अगर बढ़िया तरीका से वैज्ञानिक विधि से अगर कही जा तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन बढ़िया मिली और ओकर लाभ भी मिली। अब धान के रोपाई करे खातिर जौन भी अपन पंच भाई लोग नर्सरी डरले बाटना पहले से, जौन 20-25 दिन जेकर नर्सरी हो गई बा, बढ़िया से ओकर तैयार हो गई बा, तो ओके जौन बा उपयोग में ला सकन है।
6: बिल्कुल अपन भरपाई करे समय, समय चलत भी बा, जून के तीसरा हफ्ता से लेके जुलाई के तीसरा हफ्ता तक जोन है ई काम लोग कर सकेले।
5: हाँ भैया, अब भैया देखिए जैसे कि जौन भी धान के रोपाई खातिर नर्सरी जौन भी डालल जाए तो ओके हमेशा प्रमाणित बीया कहीं डाले के चाहिए।
6: बिल्कुल बिल्कुल, काज
5: की जब नर्सरी बढ़िया रही, प्रमाणित बीया रही तो में जौन बा बढ़वार बढ़िया होई, रोग लगले के जौन बा कम
6: संभावना
5: रहला, ओमे रोग कम लगन है। एकरे अलावा जैसे समय नर्सरी से जो भी पौधा निकालत हुआ तो 4-5 पत्ती वाला स्वस्थ पौधा होए के चाहिए। ओके उखड़ला में भी सावधानी रखे के चाहिए कि उखाड़त के ओके जब उखाड़ी तो जड़ सहिते पूरा नीचे से उखड़े,
6: पता हाँ बिल्कुल
5: पता चले उखड़नी या ऊपर से उखड़ गेल जड़ ओकर जमीनियम रह गई तो वो भैया पौधा ना
6: सही। तरीका तो यह बा कि ओकर बीया भी साथे साथे निकल आवे।
5: हाँ भैया,
6: और जौन में मिट्टी लगल बा ओके साफ भी कर देवे के चाहिए।
5: हाँ भैया, आ तो देखल जाला जब खेत में जब पानी भर दिया जाला तो बीया बा जौन गठियावल रहला तो कैसे सब पनिया से साफ कर दिया जाला मटिया, अपन पंच भाई लोग साफ कर देना। आप पौधा अगर आप लगावत हई तो एक जगह ही 1-2 अधिकतम 3 पौधा ही लगावे के चाहिए, काहे कि बहुत ज्यादा पौधा अगर एक जगह ही लगा देबे तो फसल के उत्पादन जोन बा घटा देला।
6: भैया देखा, सबसे बड़ बड़ बात में यही होले कि किसान भाई लोग अपने लगेबे करेले, साथे साथे कुछ और लोगन के बोला लेले,
5: हाँ
6: लोगन के बोला लेले,
5: हाँ
6: तो ओ लोगन के ई बात बता देवे चाहे कि भैया तीन से ज्यादा न लगावे,
5: तीन से ज्यादा न लगावे नहीं तो उत्पादन घटी जाई। और एकरे अलावा जैसे पौधा को रोपत हो तो कम से कम 2-3 सेंटीमीटर गहराई में ही रोपे, ओके अंदर तक ओकर जड़ चली जाए, आ कतार से कतार के दूरी 20-25 सेंटीमीटर रखे और पौधा से पौधा के दूरी कम से कम 10-15 सेंटीमीटर रखे के चाहिए।
6: भैया देखा, यही में एक काम है लोगन के और करे बा बैठौले के पहले,
5: हाँ,
6: जब उखाड़ के ले आता है पौध,
5: हाँ,
6: तो वो समय जोन है कार्बेंडाजिम होले एक ठो दवाई 75% WP के जोन मात्रा है, एक लीटर पानी में घोल बना लें,
5: हाँ,
6: और यह घोल में जोन है पौधा के जड़ के लगभग 20 मिनट तक डुबो के रखें, ओकरे बाद रोपाई करा में।
5: हाँ हाँ हाँ भैया देखिए, और एक अलावा जैसे उर्वरक प्रबंधन करती हमन के अपने पंच भाई लोग के हमेशा ही बताओ जला कि फसल बोला से पहले अपने माटी के जांच करा ले के चाहिए। माटी के जांच करा ली तो उनके खेते में कौन उर्वरक शक्ति के अधिकता बा, कौन चीज के कमी बा, तो वो अनुसार अगर अपने उर्वरक का प्रयोग करी तो उनका लागत भी कम लगी और उत्पादन भी बढ़िया हुई।
6: भैया देखा, ये तो परंपरागत बात हो गई,
5: हाँ
6: धान के फसल के यही तरह से बहुत किसान भाई बाण है जो उनकी कुछ अलग हट के कई चाह लें, कुछ अलग तरह के खेती कर चाहे लें।
5: हाँ,
6: देखा साग सब्जी के बात भई,
5: हाँ,
6: वही तरह से औषधि पौधा के बात भई,
5: हाँ,
6: उसमें सबसे ज्यादा खाए वाले प्रयोग करे वाली एठो हल्दी भी बा।
5: हाँ भैया, हल्दी के देखो हाँ, ना दवाई के रूप में, मसाला के रूप
6: मसाला
5: में
6: कई
5: तरह से उपयोग कई जाला,
6: यहाँ
5: तक कि कहीं अगर क्योंकि चोट चपेट लगा तो मनी कहला दूध में हल्दी डाल के पीला भैया आदमी जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो हल्दी के नया प्रजाति के खेती कौने तरह से कई जा, कैसे कैसे कई जा, तो अपने आज बीच में आए हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, अपन पंच भाई लोग के बताओ थे हल्दी की नई प्रजातियों की खेती, आप विनय कुमार इनसे जानकारी लेते हैं।

0: पंच भाई सुने।
1: किसान भाई हमन के आय दूना करे के बा। आय दूना करे खातिर कई उपाय बा। ऐसन बात नहीं कि जौन गेहूं 21 में 22 में 20 में बिकत बा वो सीधे 44-45 रुपया किलो बिके लगी या कृषि का अन्य उत्पाद सीधे दूना दाम पर बिके लगी। हाँ, आय दूना कैला का मतलब खर्चा में कटौती। जौन उत्पादन आपका भइल बा ओके प्रोसेस करके यानी कि ओकरे रूप में परिवर्तित करके बाजार में अधिक दाम लीहल भी आय दूना कैला का तरीका है। खर्चा में कटौती, रासायनिक खाद से जितना जल्दी हो सके कम से कम ओकर उपयोग कैल जा। लेकिन और भी ऐसा क्षेत्र हुआ कि अगर यह तरह का काम कैल जा तो हमन का बचत ज्यादा होई और लागत काफी कम हो जाये। खास तौर से जब साग भाजी का बात आवेले तो एक हिस्सा हमन को छोड़ दे ही ला जा मसाला वाली फसल का, दवा बीरो बनाए वाली फसल का, जौन अपने रसोई घर का सम्मान बढ़ावे ला। बहुत ऐसा तीज त्योहार हुआ, मांगलिक कार्य हुआ जौना में एकर उपयोग होला। बगैर एकरे उपयोग के या उपस्थिति के हमनी का सब चीज अधूरा रह जाला। अब आप लोग समझ गए हो कब हम आज आप लोगों से हरदी के खेती के बारे में बात कर चाहतनी। और आज अपने साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह। आप हैं प्रभारी अधिकारी औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर झांसी। हम आप लोगों के एक बात बतावल चाहब कि बरुआ सागर झांसी में ऐसा जगह है जहाँ हल्दी, अदरक या कंद वाली फसलन का शोध कार्य होला, प्रजाति निकालल जाली आ कृषि का तकनीक अपनावे का तौर तरीका का होखे एकरे बारे में जानकारी उपलब्ध करावल जाला। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब ये बताई कि जौन बरुआ सागर जनपद झांसी में स्थित बा एकर कंद वाली फसल सल्क कंद वाली खास तौर से हल्दी के बारे में कौना तरह से कार्य चलत बा आ अच्छा प्रजाति अच्छा उत्पादन क्षमता बढ़ावे खातिर आप लोग का करत हैं ये समय।
2: बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने हमको इसी बहाने जो है किसान भाई से बात करने का मौका दिया। देखिए पूरे भारत देश में और जो है विदेश में भी जैविक के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और ये हल्दी ऐसी फसल है कि अगर हम इसको जैविक बीज से करते हैं तो हमारा जो जो हल्दी का जो कलर है, सुगंध है और जब उसको हम गांठे बनाते हैं तो वो रिकवरी रेट सभी में इजाफा होता है। अच्छा एक बात और कि बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है धीरे धीरे परिवारी बंटवारा होते होते रकबा भी छोटा होता गया है तो हल्दी को हम जो है खुले खेत में भी कर सकते हैं। अगर बाग बगीचा है मतलब अगर 50% 60% भी अगर धूप मिल रहा है हल्दी को तब भी हल्दी की खेती हो जाती है। तो इसको हम लोग जो है जैविक बीज से भी कर सकते हैं, अगर रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तब भी कर सकते हैं।
1: हल्दी का खेती हमारे यहाँ पूर्वांचल में हर जिला में कुछ न कुछ कही जाला घरे अपने मर मसाला में डाले खातिर, लेकिन पड़रौना बा, महाराजगंज बा, सिद्धार्थ नगर बा, एजा बहुतायत में होला हल्दी और बाहर भी भेजल जाला। आप पूर्वांचल का रहे वाला हैं, खास तौर से जनपद गोरखपुर का ही मूल निवासी हैं। एजा हल्दी उत्पादन का समस्या क्या है आ बढ़िया प्रजात बढ़िया समय से ओकर रोपाई कंद का उपचार का कुछ सलाह दिहल चाहब कि यह साल हल्दी का उत्पादन और बढ़े यह पूर्वांचल में जहां जहां हल्दी का खेती होत बा।
2: सबसे बड़ी बात मौसम होता है। अभी आपने देखा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बरसात औसत से कम होता है, कभी कभी इतना बरसात हो जाता है कि हमारे किसान भाई जल निकासी से परेशान हो जाते हैं, जल भराव हो जाता है। और हल्दी या कंद वाली जितनी फसलें हैं अगर जल निकास नहीं अच्छा रहेगा तो कंद सड़ जाता है, तो किसान का जो जो बीज जो बोता है जो उसकी मूल लागत वो भी चली जाती है। और जहां तक इसकी अन्य समस्या की बात है तो कभी कभी अगर मान लीजिए एक ही खेत में हम बार बार खेती कर रहे हैं तो कंद के सड़ने की समस्या आ जाती है और कभी कभी जो है पत्तियों पे जो है कुछ काले काले भोरे भोरे धब्बे बन जाते हैं। लेकिन अगर अब हम 2-3 साल के बाद हम खेत बदलते रहें तो हमको काफी हद तक जो है इन छोटी छोटी समस्याओं से राहत मिल जाती है, लेकिन प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है तो मौसम का मार किसान बहुत झेलता है।

0: और जो है आगे भी मौसम के मार्ग उनके ऊपर पड़ती रहेगी। इससे हम ये कहिए कि मौसम को हम कंट्रोल करने ये तो बस की बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हम कि ऐसा भूमि का चयन करें जो थोड़ी ऊंची हो, जल निकास अच्छा हो तो अच्छा रहेगा।
1: प्रजात के बारे में आप लोग कौना तरह का सुझाव देला, खास तौर से अपने यहाँ पूर्वांचल के क्षेत्र में उत्पादन बढ़िया होके आ ओकरे अंदर जो तत्व पावल जाला ओकर भी गुणवत्ता बढ़िया होके।
0: हल्दी में जो है, जहाँ से मैं पढ़ाई किया हूँ, आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ पे बहुत सारे प्रजातियों का कलेक्शन किया गया है और उसमें से कुछ प्रजातियाँ हमारे यहाँ भी हैं। हम लोग जो है, जब बस्ती में हम थे तो उद्यान विभाग के माध्यम से राजेंद्र सोनिया और रोमा दो प्रजातियों का हम लोग बढ़ावा दे रहे थे। तो राजेंद्र सोनिया और रोमा प्रजातियाँ अच्छी हैं। और उसमें जो जो आपने कहा तत्व की बात, जो कुरकुमिन होता है, ये तत्व उसमें होता है कुरकुमिन, तो कुरकुमिन की मात्रा भी इसमें ठीक ठाक है, अच्छा है अन्य अन्य के तुलना में। तो हम तो जो यही राय देंगे कि आजाद हल्दी वन है, या नरेंद्र हल्दी है, या राजेंद्र सोनिया है, या रोमा है, इन सब प्रजातियों में किसान भाई लगाएं।
1: एकरे बुआई कैला का सही समय का आ विधि का हा।
0: किसान भाई जो है आलू खेती उधर करते ही हैं, तो जैसे आलू की खेती करते हैं ऐसे ऐसी खेती करते हैं। और मिट्टी में नमी अगर पर्याप्त है तो हम इसको मई से लेकर के जून में जुलाई में बो सकते हैं। गुहा से गुहा की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर, और जो जमीन के अंदर जो लगाते हैं कंद को, ये जो है 6 से 7 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: हल्दी की खेती में का आलू की तरह मेड़ भी बनावे को पड़ला या समतल खेत में बुआई का देवे के चाहिए?
0: सर, जो लोग अधिक खेती करते हैं, बड़े बड़े प्लाट वाले खेती करते हैं, जहाँ पे जल निकास की कोई समस्या नहीं है, जैसे हमारा एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो अगर देसी हल टाइप का हो तो उसे कूड़ बना करके उसमें भी बुआई कर देते हैं। हमारे पूर्वांचल में, मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ, इसलिए हमने देखा है हमारे पूर्वांचल में गुहा बना करते हैं सर।
1: प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई के हिसाब से एकर बीज दर कितना है आ बीज का शोधन कैसे करे के चाहिए?
0: सर जो है, अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 7 कुंतल लगता है 1 एकड़ में। अगर हेक्टेयर की बात करें तो 20 से 25 कुंतल बीज लग जाता है इसमें। एक एक कंद जो हम बोते हैं, इसका 25 से 30 ग्राम से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो है कंद जो होता है, नया कंद बोना चाहिए, पुराना जो है गांठ नहीं बोना चाहिए, जिसको हम लोग लोकल भाषा में वहाँ गोरखपुर में फेद्दा बोलते हैं, तो उसको नहीं बोना चाहिए। जो नया नया राइजोम निकला होता है उसी की बुआई करनी चाहिए। और जहाँ तक शोधन की बात है सर, तो कार्बेंडाजिम बहुत अच्छी दवाई है। अगर 2 लीटर पानी में 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना लीजिए, और उसमें इन कंदों को हम जो है 1-2 दिन बुआई के 1-2 दिन पहले उसमें डुबो दें 15-20 मिनट के लिए, और फिर निकाल करके छाए में सुखा लें तो अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दिहली कि हल्दी का बढ़िया प्रजात कौन है, का कौना विधि से बुआई कैल जा तो अच्छा उत्पादन मिल सकेला, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: हाँ भैया, बहुत निमन जानकारी दी है ना डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, हल्दी की नई प्रजातियों की खेती विषय पे विनय कुमार जानकारी लेते रहना। इतना निमन जानकारी बदे दी है, धन्यवाद। सुखल सुखल नाई एठो गीत के माध्यम से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
4: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
5: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
4: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
5: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
4: गाने के बोल,
5: गीतकार
4: और संगीतकार,
5: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
4: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
5: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
4: गाते
5: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
4: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: हाँ भैया, संदेश से पहले आप सुनत ली है बलराम यादव साथी लोग के आवाज में बहुत बढ़िया गीत। आप लोगों के पूरा मनमन साइन भइल। आप कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा, सुनल जा बातचीत कुत्ता पालन व्यवसाय के रूप में डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव से बात कही करता हूँ। क्रिश्चन पंच उठाऊ।
7: पंच भाई, खेती बाड़ी से लगल जुड़ल काम पशुपालन कहवे। केहू मुर्गी पालन करता, केहू बकरी पालन करता, केहू बत्तख पालन करता, और हम देखली कई लोग कुत्ता के भी जनबा पालन कर रहा बाटे। कुत्ता के पालन अगर केहू व्यवसायिक स्तर पे कल चाहता तो कैसे कल जा, आज यही विषय पर आप सबके जानकारी मिली। यह विषय पर जानकारी देहला खरतिन हमरे बैठकी में आये हुए डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, जो उनकी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं गोरखपुर मुख्यालय में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। सबसे पहले हम आपसे ये जानल चाहब कि अगर केहू कुत्ता पालन के व्यवसाय के रूप में कल चाहता तो कुत्ता के कौन कौन अच्छी नस्ल है जौने का पालन कल जा सकेला।
8: यार, कुत्ता पालन के चलन बहुत बढ़ल बा, और ये बात देखने में भी आयल बा कि यहाँ पर लोग द्वारा बहुत तरह के कुत्ता पाल जाता और अच्छे से पाल जाता
7: जी।
8: यही लक्ष्य पर हम लोग पिछले 6 साल से यहाँ पर डॉग शो करत बाटी, जिमें कम से कम 27-28 तरह के कुत्ता, मतलब 27-28 तरह के ब्रीड, कुत्तन के ब्रीड
7: जी,
8: शो में आवेल है, और वो दिनों दिन वो पूरा ग्राम गोरखपुर महोत्सव के साथ टाई अप होके अच्छा चलाता
7: जी, जी।
8: तो गोरखपुर में लगभग जौन वेरायटी हिन्दुस्तान भर में पावल जाला उनमें से ज्यादातर वेरायटी यहाँ बा, और लोग बहुत अच्छे से होके पालत बाटे
7: जी जी। कौन कौन मुख्य नस्ल बाटी ओकरे बारे में हम चाह बता दें।
8: देखिए, कुत्ता पल्ले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होला ये कि आपको जरूरत का बा
7: जी।
8: कई बार लोग परेशान भी होला, अगर केहू के छोट घर बा, अगर केहू का छोट घर बा तो छोटे साइज का कुत्ता पाले के चाहिए। जेकर घर में छोट बच्चे बाटे वहाँ भी जोन बा टॉय डॉगो के बोले जाला, जेमे पामरेनियन है, जर्मन स्पिट्स है, पग है, ये तरह के कुत्ता पाले। जेकर बड़ा फार्म हाउस टाइप के बा या बड़ा हवेली बा या बहुत ज्यादा जगह बा, वहां बड़े ब्रीड के कुत्ते जैसे जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, सेंट बर्नार्ड, हस्की, बॉक्सर, ये तरह के कुत्ता पाले के चाहिए।
7: अच्छा, ये जितना भी नस्ल आप बतौली है, केहू अगर के खरीदल चाहता तो कहाँ से मिल सकले?
8: देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में अभी कोनो एकर मॉनिटरिंग बॉडी नहीं बा
7: जी।
8: पूरे देश में एक मॉनिटरिंग बॉडी है कुत्तन के ब्रीड में, जिसे कहा जाला कैनेट क्लब ऑफ इंडिया, KCI
7: जी।
8: वो सबसे सर्वोच्च संस्था है, सरकारी नहीं है वो, लेकिन उनमें लोग रजिस्टर्ड अपन कुत्ता करावे ले। कुत्ते के व्यवसाय गोरखपुर जैसे शहर खाती एक नया चीज बा
7: जी।
8: और यहाँ पे अभी फिलहाल कोनो लाइसेंस की प्रथा नहीं बा, लेकिन एक चीज समझे चाहिए कि एक तरह के जोन भी व्यवसाय होला, चाहे गाय पालन का हो के, बकरी पालन का हो के, और मुर्गी पालन हो के या कुत्ता पालन हो के, इस सबकर कस्टोडियन

0: ये सब कर मालिक होला नगर निकाय।
1: जी जी।
0: गोरखपुर शहर में हुई तो नगर निगम हुई, पंचायत में हुई तो नगर पंचायत या जिला पंचायत हुई, नगर पालिका में हुई तो नगर पालिका हुई।
1: जी जी। कुत्ता का बच्चा अगर कहूँ खरीद लेलस तो ओकरे रखले का क्या व्यवस्था करे, कैसे जोन बा ओके व्यवस्थित ढंग से रखल जाए?
0: पहले तो हमेशा खरीदने से पहले खूब जांच पर रख ले, क्योंकि अभी ये नया व्यवसाय है, और ये समझ ले कि उसको कौन सा ब्रीड चाहिए, वो ब्रीड के कुत्ता ले आवे घर में, और बच्चा ही ले आए। बच्चा लाने में फायदा है, 2 महीने से कम का बच्चा ना लाए, ये मतलब सुझाव बा, 2 महीने से ऊपर का बच्चा, 3 महीने का बच्चा लाए। लैले के साथ ही ओकर जहां से ले आए उसे पूछ ली कोनो टीका लगल बा कि नहीं लगल बा, अगर टीका नहीं लगल बा ओके कीड़ी की दवा नहीं दिया गल बा, पास के कोनो पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलके, पशु चिकित्सक से मिलके ओके दिखा के ओकर लैले के साथ ही ओकर टीकाकरण और कृमिनाशक दवाई देल शुरू करे के बाद।
1: अच्छा, ओकरे खैले पेले के का व्यवस्था कर लिया?
0: जोने हिसाब से यहाँ पर पालल जाला या जोन यहाँ पर सामाजिक सरोकार बा ओमे घर कहीं बनल, बस 2 चीज का ध्यान देवे चाहिए, एक नमक और दूसरा जोन बा चीनी, ये दोनों से थोड़ा दूर रखें। जैसे बच्चन के दिया जाला पहले दूध दिया जाला, जो 500 बच्चे होला उनके दूध में पानी मिला के दिया जाला, वैसे धीरे धीरे स्वान के बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा हल्का बहुत हल्का भोजन या दूध में पानी मिला के या थोड़ा थोड़ा 5 बार 6 बार दीजिए। जैसे जैसे कुत्ता अपन ओकर उम्र बढ़ी ओकर एज बढ़ी वो हिसाब से ओकर खाना का थोड़ा गलिष्ठ भोजन देवे के बा, और ओकर जो 5 बार 6 बार देवे बा ओके कम करके 3 बार 4 बार या 2 बार में ले आवे के बा।
1: जी जी। अच्छा, उनके स्वास्थ्य के लेके का सावधानी बरतल जा?
0: स्वास्थ्य के लेके सावधानी ये बरती, जहां से ले आई कुत्ता वो हम बार बार हर बार सबसे ये कही ले कि जहां से ले आई ओकर पहले समझ नहीं कि ओकर माई बाप के रहल।
1: जी जी।
0: अच्छे ब्रीडर के यहाँ से कुत्ता ले आई या अच्छे जाने वाले के यहाँ से कुत्ता ले आई, ओके ले आई ओके कृमिनाशक दवाएं और ओके टीकाकरण अपने पास के पशु चिकित्सक से मिल ली, ओके करी और जहां पे रखी ओके, अगर बहुत छोटा बच्चा बा ठंड ज्यादा बा तो के कोनो गत्ता में कोनो कागज के कार्टून में रखे अपने पास रखी।
2: हाँ भैया, देखी बहुत बढ़िया जानकारी दी ना डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, कुत्ता पालन व्यवसाय के रूप में कृष्ण जी जानकारी लेते रहने, जानकारी देने बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल
2: भैया, देखिए एक साथ अपन चले बेरा होता चलत के अपने पंच भाई से ये कहब, ये गर्मी के मौसम में अपने साथे साथे जो अपन चौगा चांगर बाटे
3: उनके भी बचाव
2: पूरा ध्यान दी, उनके बचाव उनकर देखरेख बढ़िया से करें, उनके उत्तम आहार का व्यवस्था करें और पानी भी उनके समय समय पर जो दिन भर में 2-3 बार पानी भी ताजा स्वच्छ पानी दिखावत रहे।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो भैया चल जा, पंचो जय जवान जय किसान।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। श्रोताओं, पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर द्वारा हमारे केंद्र को जिन विलुप्त व्यक्तियों के संबंध में सूचना दी गई है उनके विवरण इस प्रकार हैं। सुग्रीव मिश्रा, पुत्र स्वर्गीय रामविलास मिश्रा, निवासी ग्राम कुशहरा, थाना बेलहर कला, जनपद संत कबीर नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। सुग्रीव मिश्रा, पुत्र रामविलास मिश्रा की उम्र लगभग 28 वर्ष है। इनका रंग सांवला है, चेहरा लंबा है, एकहरा मजबूत जिस्म है। सुग्रीव मिश्रा, पुत्र रामविलास मिश्रा, सफ़ेद रंग का शर्ट और नीले रंग का जीन्स पैंट पहने हुए हैं। ये 12 अक्टूबर 2000

0: 2024 से लापता हैं। इनके संबंध में कोई भी सूचना प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद के इस मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। मोबाइल नंबर है 9454404314। लाली गुप्ता पुत्री लौटू गुप्ता साकिम जमयाताल थाना धर्मसिंहवा जनपद संत कबीर नगर के गायब होने की सूचना हमारे केंद्र को दी गई है। लाली गुप्ता पुत्री लौटू गुप्ता की उम्र लगभग 16 वर्ष है। इनके संबंध में कोई भी सूचना पुलिस अधीक्षक जनपद संत कबीर नगर को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली।
2: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
3: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
2: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
3: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
2: गाने के बोल,
3: गीतकार
2: और संगीतकार
3: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
2: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
3: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
2: गाते
3: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
4: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
5: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
6: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
5: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
6: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
5: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
6: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
4: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
7: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
8: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
8: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
7: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
8: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
7: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
2: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
1: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
2: हर गली हर मोहल्ला हो साफ। स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
1: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
2: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आइए सुनते हैं प्रभात कुमार मिश्र के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551220538 6। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 2205386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 बजे से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा।
2: टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details, log on to www.ddindia.com।
6: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में। इस समय आप सुन रहे हैं प्रभात कुमार मिश्र के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे प्रभात कुमार मिश्र के स्वर में कुछ पारंपरिक लोकगीत, और इसी के साथ हमारा लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश हमार में आइए सुनते हैं परमहंस मिश्र प्रचंड से उनकी भोजपुरी कहानी पियरिया।
1: धरीशन बड़ा प्यार से जयप्रकाश नगर में रहत रहे लोग। बाकी एक दिन एकाएक एगो पटीदार के पतोह के अपने पति के संगे बाजार जात देखलसी, तो पियरिया का भी श्रद्धा जागल। उ धरीशन से अपने इच्छा के कहलस। बाकी धरीशन शहर जाए के कौनो रुचि ना देखौले, साथ ही कहले आजकल कुछ पैसा के अभाव बाटे, जब बगली में पैसा

आ जाई त तहरा के लेके हम शहर देखा देहब। पियरिया ई बात सुनते आग बबूला हो गईल। उ कहलस हमरे ब्याह भइला 5 बरिस बीत गईल, बाकी आज ले कुछ ना कहले।

के पिघला देला, कुछ भी करा सकेला। धरिछन पूछले तो का चाहत बड़ू, उ कहलस कुछ नहीं खी चाहत। फिर धरिछन कहले, अरे बताओ बताओ, तहार हर इच्छा के पूरा हम करब। अगर हमरा लगे पैसा नहीं खे तो तारा से कसम खा के कहतनी, खेत भी बेचे के पड़ी तो बेच देब, बाकी तहार हर इच्छा के हम वे पूरा के लिए ना मानब। सुनते पियरिया का सांप सूंघ गई। पियरिया कहलस, बाहरे कुबिचारी, पत्नी के इच्छा के राखे खातिर माई के बेच देब। किसान के धरती माई होले, धरती जे बेचेला उ माई के बेचेला। हम तो कहियो ना चाहे, भले हम उपवास रही या चाहे हमारा गहना मिले ना मिले, शहर जाई ना जाई, जिंदगी के सारा दुख काटी, बाकी हम ना कहब कि रुआ माई के बेची। हाँ, एक बात हमारा जरूर खोलेला, हम जब से ओनी तब से घर से बहरी ना निकलनी। जबकि हमारा आगा के आयल बिटियन के हम देखेनी तो ओकर पति परदेश ले गईले, विदेश ले गईले, ना जाने कहाँ कहाँ घुमौले, आ तरह तरह के कपड़ा लत्ता सिया सिया के पिन्हा पिन्हा के ले आवेले। तो हमार मन हिकेला, हमार मन तड़पेला। तनी रउआ हमरा के एगो चीज बता दी, का कोनो हम आनहर भेभर बानी, लूढ़ लंगड़ बानी, चेबर बानी, रंग बा बदरंग बानी, खोर कुबर बानी, कि हमरा के रुआ अपना संगे ले जाए में लाज लगेला। साचो साचो बताई रुआ, काहे इतना हमरा से घृणा करनी संगे लेके जाए में। आज काल के आई लड़की देखी ना तनी बाजार में, रास्ता चलत में मुर्दा शंख लगा के आ मुँह में पोती पोती के गोर बनत बाड़ी, मुँह में ओठ पर लाली लगा के झूठों के लाल करत बाड़ी। बाकी भगवान होई, हमरा के तो जन्म जाते ई गुण वहाँ का देले बानी, तो वो रुआ हमरा से लाज बा। हमरा के राहु के हित साथी देखी तो का कोनो बाउर कही का, हमार भाग्य ही ऐसन बा तो केहू का करी जाई। इतना कहत पियरिया सिसके लागल। धरिछन अपने हाथ से ओकर लोर के पोंछ के कहले, चल काल्हे चल, चूँकि यही बात खातिर तहरा के तहरा दुखी दुखी बाड़ू तो हम तहरा दुख के कभी देख ना सकीला। पैसा तो हाथ के मैल हो, आवेला जाला। अरे पियरिया, तू तो हमार प्राण हवे, ये घर के लक्ष्मी हवे, तोरा अला से हमारा कौन चिन्ह पूरा भइल। जौन काम होखे साफ कह दी हो, लजई हो मत, आज अभी खाए पिए के सामान बांध हो, काल चल चल जाई। योजना के अनुसार दोनों बेकत मिल के अपन सर सामान तैयार कर ली हल लोग। सवेरे 5 बजे भोरे में ट्रेन पकड़ के आ 4 घंटा के बाद पटना नगर में पहुँच। जंक्शन पर आकाश छुअत महावीर मंदिर के देख के तो ओकर दिल घबरा गई। कुछ दूर पश्चिम विशाल मस्जिद के देख के ताकते रह गई। एक राहे से बस पर ए बस, ट्रक, खाली टैक्सी, जीप, टेम्पो, जेने देखी उन्हें आदमी के मुड़िए मुड़ी लौके, बसे बस लौके घबरा गई बेचारी। अगल बगल बड़की बड़की हवेली, बड़की बड़की कोठी देखलस, दुकानों देखलस, हजारों खरीदार देखलस, हजारों बिकनिहार देखलस। ई सब देख के पियरिया के मन शहर में बसे के करे लागल। ओकरा दिल में आईल, ओह अगर हमहू शहर में बस जैती तो ई चीज रोज हमरा देखे के मिलित। वहाँ का लौकेला गाँव में, साल भर 6 महीना पर कहीं एगो मेला लगेला तो जिलेबी के दुकान, इहाँ तो बड़का बड़का होटल, ओमे खाए के मन तो जरूर करत बा, बाकी पैसा के बिना मन महसूस के रहियत। शाम के दोनों बेकत बाजार क के घरे लौट गईले। दोनों घरे लौट तो जरूर गईले, बाकी पियरिया के दिल में दिमाग में ओकरा रग रग के पोर पोर में शहर रच गईल बस गई। उ धरिछन से हर विधि समझा के आ शहर में रहे खातिर उनका के तैयार करा लेलस। शहर के बिजली और तरह तरह के बाजार ओकरा के अपना ओर खींच लिहलस।
दोनों बेकत आवश्यक सामान के साथे

0: पटना शहर में रहे खातिर चल दिहल लो। खेती बारी बर बटाई दिया गईल जौन आजकल होता तोने भइल। गांव के मोह मेट गईल, शहर में अपना शक्ति के लायक घर भाड़ा पर लिया गईल। लोग रहे लागल कुछ दिन नगिचाइल, सालन नजदीक आइल, बरसात के महीना आ गईल। आ पहिल के पानी में पटना पानी पानी हो गईल। हर सड़क पर गोबर आ नीचे सीभर के फूटल मल जल बह के छा गई। लोग आवे में जाए में नाक पर रुमाल के कहो अंगौछी बांधे के पड़े लागल। शहर बदबू बदबू हो गई। सारा शहर के कोनो ना कोनो बीमारी के चपेट में लोग आइए गई। धरी छन और पियरिया जमना गांव के स्वच्छ हवा में रहे के रहे अभ्यासी रहल लोग शहर में एगो कोठरी का भीतर रह के वैसे ही बहरी झांके लोग जैसे खोप के भूसा में से नेऊर अपन मुड़ी निकाल के आ बहरी झांकेला। दोनों बीमार पड़ गईले, बीसन दिन बीमार रहले। केहू के केहू शहर में के पूछेला, जेकर मन जैसे मन तैसे रहेला। घर में ढुकी केवाड़ी बंद कर दी, निकले के होके तो साझी खान निकली। केहू से ना राम राम, ना केहू से भाई दियाद, ना केहू से खान पान। मुई चाहे जीरो अपना घर में रही। आतना ना पियरिया के गांव के लजगर मेहरारू रहल, ओकरा शहर के रहन सहन देख के आउरी दिल भड़क गई। कहवा ठेहून तकले घूह काढ़े वाली औरत आ कहवा शहर में लंगटे घूमे वाली नवका जमाना के पश्चिमी हवा के लागल लैका लैकी। दतवन के पैसा, जौन सामान किनी तमना के पैसा, पानी के पैसा, बिजली के पैसा, हर काम में पैसा। जहाँ देखी एक कदम जाए के होके तो पैसा। अगर बाजार गई होखी आ पेट झरे लागे तो एक बार शौचालय में जाई तो 5 रुपया, अगर 5 बार जाए के होखे तो 2500 रुपया लागे। एक रात में एक विचित्र घटना घटल। पियरिया भोजन बनावत रहे तब ले बिजली कट गई। बहुत देर तक इंतजार कैलस, बाकी बिजली ना आई। घर में एगो मोमबत्ती के छोटी छोटी टुकी रहे, ओकरा के बारल गई। यही मोमबत्ती का मजोर में 2-4 गो रोटी बनल, तब तक गैसवो खत्म हो गई। कहीं से कोनो सहायता मिले वाला ना रहे कि पूरा भोजन बन सके। रात में दोनों आदमी जौन मिलल तौन खैले पीले आ उनका याद आइल जे का बाह रे बाह, हद हरे हमार गाँव। ऐसा गाँव में हमारा कहियो ना रहे। जौन पियरिया के शहर शहर के रोग लागल रहे, अब वह पियरिया का गाँवें जाए के रोग लाग गई। कहलस कि बाप हो बाप, अरे शहर ना हो दादा, ये जहर हो। चारू तरफ बदबुए बदबू बा, निकले के कहीं रास्ता नहीं खे, बात करे के केहू आदमी नहीं खे। हर घड़ी बवाले बवाल बा, जेने देखी उन्हें झगड़े बा। औरत के इज्जत बचावल बड़ा कठिन बा। लोग के पहनावा उढ़ावा खान पान हिंदुस्तान के सनातन संस्कृति के उल्टा बा। इहवा गंदी में एक सांस लिहल कठिन बा। ए धरिशन, ए चल चल गाँवें चल। सुन के ई कहले, हम पहले ही न कहत रहनी, तू ही ना मानत रहलू, चल लवट चल गाँवें।
1: भोजपुरी बोली का कार्यक्रम देश समार में अभी आप सुन रहे थे परमहंस मिश्र प्रचंड से उनकी भोजपुरी कहानी पियरिया। और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में आइए सुनते हैं राजस्थानी लोकगीत। कलाकार हैं कालूनाथ और साथी।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अस्तबक में अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोकगीत, कलाकार थे कालूनाथ और साथी। और इसी के साथ हमारा प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारी इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7:31 पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम आज का संगीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ यादगार फिल्मी गीत।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विनय कुमार गुप्ता से उनकी हिंदी वार्ता। विषय होगा ई कचरा। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आबिदा परवीन, गुलाम अली और चंदन दास को।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पर लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
2: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे पर श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी

0: इस सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य

0: के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त राजेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम आज का संगीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए कुछ यादगार फिल्मी नगमे। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म राज का ये खूबसूरत सा गीत। समीर के गीत को संगीत से संवारा था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, जब भी हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की चर्चा होती है तो कुछ नाम स्वतः ही स्मृतियों में गूंज उठते हैं। उन्हीं में से एक है सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी नदीम अख्तर सैफी और श्रवण राठौड़ की, जिन्हें हम प्रेम पूर्वक नदीम श्रवण के नाम से जानते हैं। इनके धुनों में ऐसी मिठास, ऐसी आत्मीयता और ऐसा भाव संसार समाहित है कि हर गीत सीधे हृदय को स्पर्श करता है। प्रेम हो, विरह हो या मन की कोमल अनुभूतियाँ, नदीम श्रवण ने हर भावना को सुरों में पिरोकर अमर बना दिया।

0: कली कली।
1: जी हाँ, भौरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
2: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
1: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
2: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
1: गाने के बोल,
2: गीतकार
1: और संगीतकार
2: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
1: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
2: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ, यादें बन जाएंगी खास। गाते
1: गाते
2: गुनगुनाते सुनिए सुबह 10:05 पर।
1: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है। फिल्म संगीत के इस सुहाने सफर में आप हैं अपने दोस्त राजेश पाठक के साथ। कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रंग का ये खूबसूरत सा गीत। श्रोताओं, नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों की मधुरता आज भी रेडियो, मंच और समारोहों में श्रोताओं को भाव विभोर कर देती है। निस्संदेह नदीम श्रवण की कृतियां हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर हैं, जो सदैव सुनने वालों के हृदय में गूंजती रहेंगी।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: स्वच्छता का संदेश फैलाओ, हर जगह सफाई लाओ,
2: कूड़ा कचरा सही जगह डालो, स्वच्छता की आदत अपनाओ,
1: साफ सफाई से जीवन सुहाना, स्वस्थ समाज का सपना सजाना,
2: गली मोहल्ला शहर हर क्षेत्र हो चमकदार, स्वच्छता का नियम सबको समझाओ बिरियार।
3: श्रोताओं, नदीम श्रवण का संगीत उस युग का प्रतीक बन गया जब गीतों में मधुरता, शब्दों में भावनाएं

और सुरों में आत्मा बसती थी। यही कारण है कि उनके पुरस्कार केवल सम्मान नहीं, बल्कि उनकी अमर लोकप्रियता के प्रमाण हैं।

श्रोताओं, मशहूर संगीतकार नदीम श्रवण द्वारा संगीतबद्ध किए गए फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर का अब समय समाप्त होता है। आप अपने दोस्त राजेश पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हिंदी कार्यक्रम में आइए सुनते हैं विनय कुमार गुप्ता से उनकी हिंदी वार्ता। विषय है ई कचरा।
1: इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के माध्यम से संचार तंत्र को विस्तार एवं व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, सेलुलर फ़ोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया है। पर आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार ने ई कचरा

अपशिष्ट भी कहा जाता है। काफ़ी मात्रा में भारी धातुएं एवं अन्य प्रदूषित पदार्थों के विद्यमान रहने के कारण ई अपशिष्ट के रूप में बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अन्य व्यर्थ घरेलू उपकरणों की अपेक्षा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कहीं अधिक नुकसानदेह होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उपयोग आने वाले अधिकतर अवयवों में बायोडिग्रेडेबल होने की विशेषता नहीं पाई जाती है और न तो इनमें मिट्टी में घुल मिल जाने का ही गुण होता है। इलेक्ट्रॉनिक रद्दी में लगभग 40:30:30 के आधार पर क्रमशः धातु प्लास्टिक एवं अपवर्तित ऑक्साइड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत से रासायनिक तत्वों व यौगिकों से मिलकर बने हो सकते हैं। उदाहरणार्थ एक सेलुलर फोन में 40 से भी अधिक तत्व विद्यमान रह सकते हैं। ई कचरा में मुख्यतः लोहा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सीसा, टिन, चांदी, सोना, आर्सेनिक, गिलट, क्रोमियम, कैडमियम, पारा, इंडियम, सेलेनियम, वैनेडियम, रूथेनियम जैसी धातुएं मिली होती हैं। ई कचरे के उत्पादन में विकासशील देश विकसित देशों से काफ़ी पीछे हैं, किंतु विकासशील देशों द्वारा ई कचरे हेतु विकसित देशों को उत्तरदायी ठहराने का भी उन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। उल्टे रीसाइकिलिंग की आर्थिक व पर्यावरण लागत काफ़ी अधिक होने से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे राष्ट्र अपने यहाँ का ई अपशिष्ट किसी न किसी प्रकार विकासशील देशों में ही भेज देता है। इतना ही नहीं, अमेरिका द्वारा बड़ी संख्या में मरम्मत किए गए कंप्यूटरों को भी नई शक्ल देकर कम मूल्य पर विकासशील देशों को बेच दिया जाता है। एक शोध के आधार पर किए गए अनुमान के अनुसार एक दशक में भारत में 130 मिलियन डेस्कटॉप कंप्यूटर और 900 मिलियन लैपटॉप ई कचरे में रूपांतरित हो जाएंगे, जिसका निपटान करना आसान न होगा। उल्लेखनीय है कि ई कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं होता और इसमें उपस्थित पारा, सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक व प्लास्टिक प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए अति घातक होते हैं। भारत में ई कचरा के निपटान हेतु 16 कंपनियां हैं, जिनकी कुल निपटान क्षमता 66,000 मीट्रिक टन है, किंतु इन कंपनियों के द्वारा देश में विद्यमान कुल कचरे के केवल 10% भाग का ही निपटान हो पाता है। प्रायः असंगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ई अपशिष्टों के निपटान के दौरान प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जाता, फलस्वरूप सतत विकास में ह्रास होता है। हमारे देश में कंप्यूटर जनित ई कचरा कुल ई कचरे का लगभग 33% है। उचित दिशा निर्देश के द्वारा ही इनका रीसाइकिलिंग किया जाना चाहिए। हाल ही में किए गए शोध के अनुसार वर्ष 2025 तक 1000 मिलियन से भी अधिक कंप्यूटरों की रीसाइकिलिंग की व्यवस्था की आवश्यकता है। भारत सहित अन्य एशियाई देशों में पश्चिमी देशों की तुलना में ई कचरे के निस्तारण में काफ़ी कम खर्च आता है। इस कारण भी अमेरिका द्वारा पुनर्चक्रण के लिए जमा किए गए ई कचरे का 60% से 80% भाग एशियाई देशों को भेज दिया जाता है। भारत में ई कचरे का निपटान प्रायः अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में होता है, जहां पुनः उपयोग या हाथ से तोड़ने हेतु इन्हें अलग अलग किया जाता है।

0: फिर मूल्यवान धातुओं हेतु चुनकर साफ करने के पश्चात इन्हें अकुशल व विषाक्त उत्पाद व्यवस्था में नष्ट करने की प्रक्रिया से गुजारते हैं। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1997 में ई कचरे के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर कबाड़ियों के हाथों चोरी छिपे आज भी बड़ी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है। ई कचरे की समस्या को कम करने एवं इसके दुष्प्रभाव से बचने हेतु ग्रीन पीसी की अवधारणा पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादित कंप्यूटरों में बिजली खपत कम होगी, साथ ही ये पर्यावरण को उतना नुकसान भी नहीं करेंगे। ग्रीन पीसी के निर्माण घटकों में पर्यावरण हितैषी अविषैले सामानों को ही प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे कंप्यूटरों के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए जिनके अवयवों को रिसाइकिल किया जा सके। देश में ई कचरे को कम करने हेतु कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। बेकार हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कंपनियां लेने को बाध्य हों, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। पर सरकार के साथ साथ उपभोक्ताओं की सजगता भी अत्यंत आवश्यक है। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाएं, तो निश्चय ही भविष्य में ई कचरे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विनय कुमार गुप्ता से उनकी हिंदी वार्ता ई कचरा। और इसी के साथ हमारा हिंदी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आबिदा परवीन, गुलाम अली और चंदन दास को।
2: ये गज़ल पेश करती हूँ हकीम नासिर की।

0: आपकी पसंद आपका गाना और आवाज होगी आपकी। जी हाँ, आकाशवाणी का सबसे चहेता प्रोग्राम हेलो फरमाइश अब आप सुनेंगे हर रविवार प्रातः 10:05 पर। कर लीजिए तैयारी क्योंकि हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के बीच होगी हमारी रिकॉर्डिंग। तो देर किस बात की, अभी उठाइए अपना फोन और डायल कीजिए हमारा नंबर 0551-220-5386। 0551 हमारा STD नंबर है गोरखपुर का। नंबर एक बार फिर से 220-5386। अपनी फरमाइश हमें बताइए और जुड़िए आकाशवाणी गोरखपुर के साथ। कॉल करना भूलिएगा मत हर शनिवार दोपहर 11 से 12 बजे के लिए।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
3: श्रोताओं, इस समय आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र आपकी सेवा में है सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इस समय आप सुन रहे हैं आबिदा परवीन, गुलाम अली और चंदन दास को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए मारा। आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech, Polytechnic, MBA, MCA, BBA, BCA, B-Pharma, M-Pharma और D-Pharma में admissions open। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली।
6: जी हाँ, भंवरे गुनगुनाएंगे और खिलेंगी आपके मन की कलियाँ।
7: 1 जुलाई से सुनिए गाते गुनगुनाते कार्यक्रम एक नए अंदाज में।
6: करिए अपने मनपसंद फिल्मी गानों की फरमाइश आकाशवाणी गोरखपुर के फेसबुक पेज पर।
7: 1 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए
6: गाने के बोल,
7: गीतकार
6: और संगीतकार
7: और अपने चाहने वालों और दोस्तों के नाम,
6: और सुनिए अपने पसंद के गीत आकाशवाणी गोरखपुर से।
7: आपकी फरमाइश हमारे सुरों के साथ यादें बन जाएंगी खास। गाते
6: गाते गुनगुनाते
7: सुनिए सुबह 10:05 पर।
6: सुनते रहिए आकाशवाणी गोरखपुर।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आबिदा परवीन, गुलाम अली और चंदन दास को। और इसी के साथ हमारा सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांड में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांड संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है

0: उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के

अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक

0: 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
0: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना सवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर साया से याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानु वक्र क्रीड़ा परिणत गज वृक्ष नियम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है। तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा।

0: ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती, सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती, मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार है। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।

0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
2: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संकलित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था, और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट गया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैंबर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और स्थिति ये है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे जो मांगती है कुछ

0: पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशरफी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है। तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात ये है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उससे मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं

0: विवश उड़ने के पंख नहीं होने से और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है, बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है। कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
1: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डामा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी सुरसरी स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण दे करके जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो,

0: कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है। किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया। मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा। वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में। उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपने ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979.

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: অর্ণব চট্টোপাধ্যায় সে রাগ হমীর সুন রহে থে। খেয়াল গায়ন কি প্রস্তুতি কাজ সমাপন আপ রাগ বাচস্পতি কে সাথ করেঙ্গে। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग बाचस्पति। द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट इन मध्य लय तीन ताल एंड द्रुत तीन ताल।

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाख मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है।

0: England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 44 सेकेंड हो रहे हैं। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।